एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मातृभूमि को नमन करते हुए आरंभ कर रहे हैं इस मात वंदना के साथ।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये मातृ वंदना भक्ति संगीत का कार्यक्रम। वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए भक्ति रचना अनूप चलोटा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति गीत, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शुभ्री केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए विपिन संचदेवा के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आपने सुना विपिन सचदेवा और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। लीजिए श्रोताओं, सुनिए सुरेश वाडकर के स्वर में ये साईं भजन।

कि जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं और जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं, यह निष्कर्ष सही नहीं है। वास्तविक बात यह है कि अंधेरा और प्रकाश सदा साथ साथ और मिले हुए हैं। एक उदाहरण से समझें। एक अंधेरे कमरे में दिया जलाइए, आप कहेंगे यहां उजाला हो गया और अंधेरा गायब हो गया। अब उसी कमरे में 100 वाट का एक बल्ब भी जला दीजिए, अब पहले से कहीं ज्यादा उजाला हो गया। तो अगर पहले वाले दिए से पूरा उजाला हो गया होता और पूरा अंधेरा दूर हो गया होता, तो फिर बाद में चाहे जितना भी प्रकाश करते, उजाले में कोई वृद्धि ना हो पाती। वस्तु स्थिति यह है कि पहले जब दिया जलाया तो कमरे में जो प्रकाश हुआ उसमें काफी मात्रा में अंधकार मिला हुआ था, और जब बल्ब जलाया तो यह अंधकार काफी कम हो गया और इसीलिए प्रकाश पहले से ज्यादा मालूम पड़ा।

प्रकाश को भी फीका कर देगा, अर्थात सूर्य के प्रकाश में भी कुछ अंधेरा मिला हुआ है। सच तो यह है कि कोई प्रकाश ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें अंधेरा न मिला हो। इसी प्रकार कोई अंधेरा भी ऐसा नहीं हो सकता जिसमें अल्प मात्रा में प्रकाश न मिला हो। जिस अंधेरे में हम देख नहीं सकते उसमें उल्लू और बिल्ली प्रकाश

0: आपका दफ्तर आते समय जागे हुए होना पूरा नहीं है, उसमें कुछ नींद अवश्य मिली हुई है, ठीक प्रकाश और अंधकार के मिश्रण की भांति। हम जागते हुए भी सोए हुए हैं, पूरे होश में नहीं हैं। इसीलिए संतों और महापुरुषों ने हमसे कहा है कि उठो जागो। अगर हम जगते में भी पूरा जागे रहते तो महापुरुषों को हमें जगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। किंतु अभ्यास से, सत्संग से और ध्यान के प्रयोगों से जागृत और सुषुप्ति के इस जोड़ में से सुषुप्ति का अंश बहुत कम किया जा सकता है और शायद शून्य भी किया जा सकता है। तब आप पूर्ण जागृत होंगे, बुद्ध होंगे, बुद्ध यानी जागा हुआ।
1: जागृत और निद्रा, इस विषय पर चिंतन अभी आप सुन रहे थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी से। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM 100.2 MHz पर।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: डीडी डायरेक्ट
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की DTS सेवा DD डायरेक्ट।
4: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।
1: FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायक स्वर हैं जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति के।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायक स्वर थे जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामायिकी। खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व बीजोपचार जरूरी क्यों, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह यादव।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे वर्तमान जो मौसम है उसके हिसाब से खरीफ की जो फसलों की बोनी के लिए पर्याप्त नमी हमारे यहाँ हो चुकी है, और जैसे ही बोनी का समय आता है हमारी जो खेतों में बोनी की अनुकूल स्थिति बनती है, तो हमारे किसान भाई जो विभिन्न प्रकार की जो हमारे जो अंचल में जो फसलें लगाई जाती हैं उनकी बोनी के लिए की तैयारी करेंगे। तो उससे पूर्व मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि वो बोनी से पहले फसलों में टीकाकरण जरूर करें। टीकाकरण का से मतलब मेरा जो है बीज का उपचार करने से है। जिस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की जो

0: समस्याएं हमारे यहाँ विभिन्न फसलों में जो आती हैं, उन समस्याओं को सही तरीके से कैसे उनका हम प्रबंधन करें, जिससे कि आगामी जो समय है या खड़ी फसल में इन समस्याओं से हमारे किसानों को रूबरू ना होना पड़े तथा जो समस्याएं हैं उनको पहले से ही हम रोक सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम बोनी से पहले अपनी फसलों में के बीज को जो है उसको उपचारित करके फिर बोनी करें, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे कुछ बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां आती हैं, जो फफूंदी जनित होती हैं, जो फफूंदी की वजह से जो है फैलती हैं, इसी प्रकार कुछ कीट जनित समस्याएं होती हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अगर हम पहले से ही बीज को उपचारित करके अगर बुवाई करते हैं तो ये समस्याएं हमारी फसलों में नहीं आती हैं, हमारी फसल का अंकुरण अच्छा होता है तथा जो नुकसान होता है इन समस्याओं से, उस नुकसान को हम पहले से रोक सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए मैं किसान भाइयों यहाँ ये कहना चाहूंगा, अगर हम फसलों में बीज को बोने से पहले उसको उपचारित कर लें या उसका टीकाकरण कर लें तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए हम तीन चीजों का उपयोग में लाते हैं, जैसे जो फफूंदी जनित जो बीमारियां होती हैं या जो रोग आते हैं उनके नियंत्रण के लिए हम जो है फफूंदी नाशक दवा से बीज उपचार करते हैं। इन फफूंदी नाशक दवाओं में आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, जैसे कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है, बीटावैक्स पावर है और साथ ही साथ कुछ जैविक फफूंदी नाशी भी आते हैं, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा वेडी है, इनका उपयोग हम जो है बीज उपचार में कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम और थायरम, ये हम 2 ग्राम आपका जो है थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, इसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम अगर ले लेते हैं तो इससे हम बीज उपचार कर सकते हैं। अगर थायरम हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम जो है 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का उपयोग जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कर सकते हैं। कार्बोक्सिन का अगर हमें उपयोग करना है तो 2 ग्राम कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम उपयोग करते हैं तो जो कई बहुत सारी जो समस्याएं जो फसलों में आती हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं, इनसे हम जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम जो है कई ऐसी समस्याएं होती हैं विभिन्न फसलों में जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ कीट जनित समस्याएं होती हैं, जैसे इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हमारे यहाँ जो है सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, मूंग और उड़द की फसल लगाई जाती है, तो इसमें पीला मोजैक रोग आता है। ये जो रोग होता है ये कीट जनित समस्या है, क्योंकि सफेद मक्खी ये कीट होता है जो इस रोग को फैलाने का में बाहक का कार्य करता है। तो इस ये जो रोग है हमारी फसल में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम अगर कीट नाशी दवा से भी अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो ये रोग जो है हमारी फसलों में नहीं आता है। इसके लिए थायमेथग्जाम 70 WS के नाम से कीटनाशक आता है, जिसको 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम जो है सोयाबीन, मूंग और उड़द में अगर बीज उपचार कर लें तो ये पीला मोजैक रोग जो फसल में जो आता है इसकी संभावना को हम जो है कम कर सकते हैं, इस रोग को हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार हम जो उर्वरक का हम जैसे उपयोग करते हैं, हम विभिन्न फसलों में अलग अलग उर्वरक डालते हैं, तो इस उर्वरक की हम उपलब्धता को हम कैसे बढ़ाएं, उर्वरक की जो है मात्रा को कैसे कम करें जिससे कि हमारी लागत में कमी आए, इसके लिए भी हम जो है अगर जो है जो कल्चर जो हमारे आते हैं जैविक जो कल्चर होते हैं अगर उनका उपयोग हम बीज उपचार में कर लें तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो राइजोबियम कल्चर आता है जो हम दलहनी फसलों में जिसको लगा सकते हैं, जो 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपयोग में लाते हैं। जो हमारी अदलहनी फसलें हैं उनमें हम जो राइजोबियम की जगह एजोटोबैक्टर कल्चर का उपयोग करते हैं, और इसी प्रकार हम जो है PSV कल्चर आता है जिसको हम फास्फोरस घुलित बैक्टीरिया बोलते हैं, इसका भी उपयोग अगर हम बीज उपचार में करते हैं तो मिट्टी में जो पड़ा हुआ जो हमारा स्पोर है, जो हम विभिन्न प्रकार के उर्वरक हैं जैसे आपका DAP है या जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसके माध्यम से जो हम मिट्टी में डालते रहते हैं विभिन्न फसलों में, तो ये जो उसमें जो फॉस्फोरस जो तत्व होता है ये जो एक ऐसा तत्व है जो चलायमान नहीं है, जो पौधे की जड़ अगर इसके पास नहीं पहुंच रही है तो वहां से वो मिट्टी के साथ जो चिपक कर वहां फिक्स हो जाता है। तो अगर हम जो है PSV कल्चर से बीज उपचार कर लेते हैं तो उसमें कुछ एंजाइमिक एक्टिविटी होती है उससे, और वो जो जो फास्फोरस में पड़ा हुआ है उसको जो है वापस जो है घोलकर पौधे को उपलब्ध कराता है।
1: खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व बीजोपचार जरूरी क्यों, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक सिंह यादव, कार्यक्रम कृषि समयकी के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM 90.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं अब से कुछ ही देर में 7:05 पर सुनिएगा वसुंधरा पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता। 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सात बजकर 45 मिनट पर प्रातः सुनिएगा आप सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री। सुबह 8:30 पर आपकी फरमाइश के गीत सुनेंगे आप, और सुबह 9:00

मिनट पर कार्यक्रम रहेगा फिल्म संगीत। श्रोताओं, सुबह 9 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में सीमा मिश्रा बद्री व्यास को सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। सुबह 10:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रहेगा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मेहंदी हसन और गुलाम अली की गई हुई कुछ गजलें सुनवाएंगे। श्रोताओं, सुबह 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत।

सुबह 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम और 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 दोपहर में सुगम संगीत का कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। इंदौर केंद्र की प्रस्तुति रहेगा। संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम इंदौर केंद्र की प्रस्तुति भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

श्रोताओं, संध्या 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल ग्रामीण भाइयों के लिए रहेगा। अभिवादन एवं आरंभिक चर्चा के अंतर्गत स्वच्छता और हमारा पर्यावरण, जल संवर्धन की आधुनिक विधियां, 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और अभिवादन आरंभिक चर्चा में राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मधुमक्खी पालन एवं लाभदायक व्यवसाय किसान वाणी गाँव में किसान के साथ स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम रहेगा। लोकगीत रहेंगे और साथ ही होगी मौसम की जानकारी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है FM 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा माँ वसुंधरा, जिसे माँ की संज्ञा दी गई है, और यह पर्यावरण के आसपास स्वच्छ वातावरण और शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ, परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे चारों ओर वह हमेशा व्याप्त रहता है। आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है, इसी कारण से वह चाहता है कि ये जो धरती है, ये जो वसुंधरा है जिस पर पेड़ लगे हुए हैं, अपनी विलासिता के लिए उन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। वृक्ष वनस्पति से तो धरती हरी भरी रहती है, लेकिन जब उनका दोहन किया जाता है तो वह बहुत ही नुकसानदायक रहता है। मनुष्य के जीवन का आधार धरती पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ होते हैं। ईंधन व इमारती लकड़ी से लेकर फल फूल औषधि प्रदान करने वाले पौधे पेड़, वायु शोधन, वर्षा का संतुलन, पत्तों से मिलने वाली खाद, धरती के कटाव का बचाव।

आर रोग ने आदि अनगिनत लाभ वृक्ष और वनस्पति से हैं। अगर वन नष्ट होंगे तो पानी का अकाल पड़ेगा और भूमि की उर्वरा शक्ति भी घटेगी, साथ ही साथ फसलों की पैदावार भी कम होती चली जाएगी। आवश्यक यह है कि अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को, जिसमें कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव वस्तुएं सब आती हैं, ये सब मिलकर ही पर्यावरण की रचना करती हैं। और हमारे जीवन में हमने कई परिवर्तन देखे, उनमें से चाहे फिर वह जलवायु परिवर्तन हो या फिर और भी कोई परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होता है और मौसम से बहुत लाभ होते हैं। मौसम के बिना कोई फसल नहीं उगाई जा सकती और ना ही मनुष्य एक जीवन के एक ही मौसम में गुजार सकता। समस्त जीवधारी मौसम को आवश्यक रूप से आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, तेज तूफान, अत्यधिक बारिश, सूखा आदि, इन सभी में शामिल है। और दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण की तीव्र गति से प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन और उनसे जुड़े हुए समस्त परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। अगर पृथ्वी पर प्रदूषण पड़ता है और पृथ्वी दूषित होती है तो आवश्यक इस वक्त है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, इसीलिए तो इसे वसुंधरा यानी माँ की संज्ञा दी गई है। शुद्ध वायु ही तो प्राणों का आधार है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्राण वायु कम हो रही है और दूसरे तत्व बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का यही कहना है कि अगर संवर्धन नहीं किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आवश्यकता है कि अपने इस पर्यावरण को बचाया जाए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। विधानसभा सत्र में विधेयक के आने की संभावना। मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश से AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित होगा। दतिया उपचुनाव के लिए अंतिम दिन 32 नामांकन पत्र दाखिल किए गए और प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल संहिता का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा। प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खंडों में संकलित है। पहले खंड में समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य के विभिन्न विधियों तथा प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं दी हैं। दूसरा खंड मध्य प्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किए गए व्यापक जन परामर्श का विवरण है। समिति को 9.58 लाख से अधिक परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की अनुशंसा की है। UCC के लिए आए सुझावों में मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने का कार्य किया गया है। विधेयक के परिमार्जन और वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है। स्पेन का समर ग्रुप मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ये जानकारी कल भोपाल में आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में दी गई। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियां संपन्न हुई। इन गतिविधियों से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 34,000 से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
1: मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश को 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बाद से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आया। इस अवधि में 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं नमो ऐप और MyGOV पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक दीर्घा विज्ञान के लोकप्रियकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका विकास नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में BSNL की रणनीतिक समीक्षा और योजना बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की अस्थायी बढ़ोतरी दर्ज की है।
3: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
4: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
3: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसके तक 28 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 32 नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर दतिया के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और इंडियन नेशनल

कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह प्रमुख तौर पर शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवार का पर्चा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा भरवाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। सीजन 2 का लक्ष्य ऐसी उद्योग संचालित, सरकार समर्थित और युवाओं पर केंद्रित चुनौतियों को पूरा करना है जो रचनात्मक प्रतिभा की पहचान करें और उन्हें निखारें। इसके साथ ही कौशल को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा करना भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है। FCI ने कहा कि करीब 5 लाख मीट्रिक टन चावल के दुरुपयोग की खबरें निराधार हैं। जांच केवल लगभग 242 क्विंटल चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है, जिसकी कीमत करीब 5,63,000 रुपये है। FCI ने स्पष्ट किया कि 1,160 करोड़ रुपये की राशि एथेनॉल कार्यक्रम के तहत डिस्टिलरियों को जारी किए गए चावल का मूल्य है, न कि कथित दुरुपयोग की रकम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा। इंग्लैंड के खिलाफ टीम ने 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा इस बार जुलाई माह में माइनस में आ गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से 3% कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में एवरेस्ट से 17 और पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में 10 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में दस्तक अभियान का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। जबलपुर रेल मंडल ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2,74,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत माखन नगर की सभी 64 पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। डिंडोरी के धमन गांव में एक पेड़ माँ के अभियान के तहत, माँ के नाम अभियान के तहत 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 फलदार पौधे लगाए गए। मंडला के PM स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी में प्रवेश के लिए 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाजापुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अतिरिक्त CLC राउंड के तहत प्रवेश मेले का आयोजन किया गया और बैतूल में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 PM पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। श्रोताओं, रूहानी धुनों के रचयिता और गजल के बेताज बादशाह कहे जाने वाले संगीतकार मदन मोहन जी, जिनकी की आज है पुण्य तिथि, उनके कंपोज किए हुए संगीत से सजे इन गीतों के माध्यम से अर्पित करते हैं उन्हें श्रद्धा सुमन। मदन मोहन जी संगीत की दुनिया में आने से पहले वह सेना में थे और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय लेफ्टिनेंट के पद पर थे। कुछ समय बाद उन्होंने सर्विस छोड़ दी और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। अंततः वह फिल्मों में आ गए। मदन मोहन जी ने कोई औपचारिक संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी वह महान कलाकारों के साथ बैठते थे, उनकी महफिलों में जाते थे और संगीत की बारीकियां सीखते थे। उनकी खास बात यह थी कि वहां जब भी कोई धुन तैयार करते थे और उसके बाद खुद सब्जी मंडी जाकर सब्जी लेकर आते थे और खुद खाना पकाते थे, तो एक संगीतकार के साथ वो एक अच्छे रसोइया भी थे। उनकी धुनों में सितार का काफ़ी प्रयोग होता था, लेकिन उन्हें सितार बजाना नहीं आता था। लता मंगेशकर के साथ उनके रिश्ते भाई के थे और वह काफ़ी प्रशंसक भी रहीं लता मंगेशकर उनके काम की। लता मंगेशकर जी ने उनके निधन के 29 साल बाद जो उनकी कंपोज की हुई धुनें थी, जो हमारे लिए अनसुने गीत थे, उन गीतों को गाया और एल्बम तैयार की। आज उनकी पुण्य तिथि पर हम अर्पित करते हैं श्रद्धांजलि। सन 1964 में एक फिल्म आई थी, वो कौन थी, उसका गाना लग जा गले काफी फेमस हुआ। शुरुआत करते हैं इसी गीत के साथ।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ गीत आपने सुना। संगीत तैयार किया था मदन मोहन जी ने। श्रोताओं, गीत आपको और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से, और आज हम सुनवा रहे हैं मदन मोहन जी के संगीत से सजे हुए कुछ गीत। श्रोताओं, उनके पिताजी जिनका के नाम राय बहादुर चुन्नी लाल था, फिल्म निर्माण कंपनी बॉम्बे टॉकीज के संस्थापकों में से एक थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित करते हैं उन्हें श्रद्धा सुमन गीतों के माध्यम से। लीजिए सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से लिया हुआ ये गीत। राजा मेहंदी अली खां की रचना थी और संगीत आपको पता ही है मदन मोहन जी का। श्रोताओं, मदन मोहन जी को जानवरों से बहुत ही प्रेम था। वे अपने पालतू कुत्तों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को घर में फिर से कोई भी पालतू जानवर रखने की सख्त मनाही कर दी। काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड थे और काफ़ी अच्छे धुनों को उन्होंने तैयार किया। सुनते हैं उन्हीं के संगीत से सजे ये।

परछाइयाँ। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे और संगीत मदन मोहन जी का। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

चिराग इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मदन मोहन के सजे हुए संगीत के गीत सुनवा रहे हैं। वीर सारा में का जो मूल संगीत दिया था वो मदन मोहन जी ने ही दिया था। यहाँ पर हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी की रचना।

लता मंगेशकर के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार क्षेत्रीय।

सूचना परक दैनिक कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। एक सुविचार के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि किसी से बदला लेने की खुशी दो पल की रहेगी, लेकिन माफ कर देने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। श्रोताओं, बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। जी हाँ, आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आता है, मैनिफेस्टेशन यानी अभिव्यक्ति। मैनिफेस्टेशन शब्द का असली मतलब किसी विचार या सोच को वास्तविकता में बदलना। जब लोग मैनिफेस्टिंग की बात करते हैं तो उनका मतलब आमतौर पर अपने विचारों, भावनाओं और विश्वास को कुछ एक्शन का इस्तेमाल करके किसी विचार को वास्तविकता में बदलने

कहा जाता है, यानी कि जिस विचार को हम बार बार बार बार सोचेंगे और उसको कार्य रूप में परिणित करेंगे, वह होता है मैनिफेस्टेशन। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। अपने विचार और अपने विश्वास के जरिए अपने जीवन में इच्छित चीजों की ओर आकर्षित होना या आकर्षित करना आकर्षण का नियम है, और यह इसी बात पर आधारित है जिसमें कहा जाता है कि आपकी सोच और ऊर्जा वैसी ही परिस्थितियां आपकी ओर आकर्षित करती हैं, यानी कि हम जैसा सोचेंगे वैसी ही परिस्थिति बन जाएगी और वैसी ही ऊर्जा हमारे जीवन में आएगी। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको क्या लक्ष्य हासिल करना है। अगर आप अपना लक्ष्य अच्छे से तय कर लेते हैं तो इससे जुड़ी हुई सभी नकारात्मक बातें दिमाग से निकाल लेते हैं। अपने मन को पूरी तरह से तैयार करने के बाद जब अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो वह निरंतर उस क्रिया को करना चाहिए। मेहनत के दौरान आप अपने मन को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें। अभिव्यक्ति अपनी शक्ति आकर्षण के नियम से प्राप्त कर ही लेती है, एक सिद्धांत जो यह बताता है कि हमारे विचार जीवन के अनुभवों को सीधा प्रभावित करते हैं। इसलिए श्रोताओं, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। बुजुर्गों ने भी कहा है कि जैसा बोए अन्न वैसा पाए फल।

श्रोताओं, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वर्षा ऋतु में जल जनित बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में डायरिया रोको अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन करने के साथ साथ लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि वर्षा के दौरान भूजल एवं अन्य पेयजल स्रोतों के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से जल स्रोतों का क्लोरीनेशन किया जा रहा है ताकि डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में 9 गांव के सभी पेयजल स्रोतों में जर्मैक्स डालकर क्लोरीनेशन किया गया। अभियान के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की विकासखंड की समन्वयक सुश्री वंदना गौ ने ग्रामीणों को पेयजल के स्रोतों के आसपास साफ सफाई बनाए रखने, केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल का ही उपयोग करने का ही बताया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना क्यों जरूरी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सिंगल स्क्रीन एवं मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में दिव्यांग जनों के लिए आवश्यक सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा जी ने नगर पालिका परिषद शिवपुरी के शहर नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक रखरखाव का कार्य किए जाने हेतु 11 केवी लोधावली से जुड़े हुए क्षेत्रों पर 14 जुलाई यानी आज विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। उक्त फीडर के बंद रहने से प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गौशाला, लोधावली इत्यादि क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर शिवपुरी में श्री पुष्पेंद्र पुरुषवानी की स्मृति में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगा। टूर्नामेंट में अंडर 16 से 40 और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल जगत में श्री पुष्पेंद्र पुरुषवानी के योगदान को सम्मान पूर्वक याद करना और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। खेल जगत में उनका काफी योगदान रहा है। पुरुषवानी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस एम्पायर, इंटरनेशनल रैकेट कंट्रोलर, इंटरनेशनल कोच तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। वर्ष 2021 में कार्य के दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने कम उम्र में पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की थी और साथ ही साथ खेल तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं रखा गया है और सभी प्रतिभागियों को टूर्नामेंट की टी शर्ट प्रदान की जाएगी तथा विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। श्रोताओ, नई व्यवस्था के अनुसार महिला प्रशिक्षार्थियों को प्रथम वर्ष में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा जो प्रदेश की बेटियों को कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026 से प्रदेश के सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाली महिला प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था प्रदेश के सभी शासकीय आई

सीआई में लागू की गई है। श्रोताओं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने जिले के सभी कृषकों से समय सीमा के भीतर अपनी फसलों को बीमा कराने की अपील की ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम से फसल नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। और जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लिया है उनका फसल बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे किसान अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर बीमा की प्रक्रिया को पूरा करें। और जिन किसानों ने KCC कालातीत यानी कि डिफॉल्टर हो गई है या जो अऋणी श्रेणी में है वे भी फसल बीमा करा सकते हैं। इसलिए वे निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र या MP ऑनलाइन केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, आज का अधिकतम तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। आपको ये बता दें, आज हवा की गति रहेगी 70 किलोमीटर प्रति, आर्द्रता रहेगी 70% और हवा की गति रहेगी 23 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। ये कुछ जानकारियाँ थी और मौसम की जानकारियाँ थी। श्रोताओं, आपको हम ये बताते हैं कि अभी समय तो है बारिश का, लेकिन ये समय ऐसा है कि जहाँ बीमारियाँ भी बहुत फैल रही हैं, चाहे फिर वो डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो। तो आपसे यह निवेदन है कि इस मौसम में शुद्ध पेयजल का या फिर हो सके तो उबले हुए पानी का प्रयोग करें। इसी विचार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें। लीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार शिवपुरी। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात दिल्ली के इनसे अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: पीस कीपिंग हैज बीन अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ

0: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है। उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी

0: धागा कारखाना फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार निवेश नवाचार नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र फैशन सतत विकास प्रौद्योगिकी नवाचार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता निर्यातक वैश्विक खरीदार निवेशक नीति निर्माता अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल शिल्पकार स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका ब्रिटेन जापान पुर्तगाल स्पेन न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल सिक्किम असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख बिहार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र झारखंड सिक्किम कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर लखीमपुर दरांग सोनितपुर धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन जिलाधिकारियों पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन

0: के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। इंडिया ऑफिशियली लॉन्चेस इट्स कैंपेन फॉर इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2028-29 टर्म। Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: highlighting India.

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश फिल्म संगीत। श्रोताओं, फरमाइशी खत हमारे पास आया है सिद्ध विहार कॉलोनी नाई की बगिया से रवि जैन, पर्व जैन, अवनी जैन, कोको जैन का। एक और फरमाइशी खत है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा का। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

धर्मात्मा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदीवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्र से। अगला

दयावान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना पंकज उधास अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। अजीज क्यासी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा, परी, संजना, कार्तिक भाऊ मराठा, ललिता नारायण खर्चे। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है चांडोर बिस्वा तालुका नादुरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से। आपकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

इज्जत, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से। खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी का। एक और फरमाइशी खत है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

राधा का संगम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर कीर्ति कुमार की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे और अनु मलिक का संगीत था। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM 100.2 MHz। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सीमा मिश्रा और बद्री व्यास के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोकगीत के साथ। संगीत संयोजन निर्मल मिश्रा का है, लीजिए सुनिए।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना सीमा मिश्रा और सतियों का गाया हुआ ये लोकगीत। लोकगीत आपको और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए।

0: आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये लोकगीत।

अभी आपने सुना सीमा मिश्रा और बद्री व्यास का गाया हुआ ये गीत। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गैर फिल्मी गीत।

सीमा मिश्रा और साथियों के गाए इस लोकगीत गैर फिल्मी गीतों के माध्यम से आज हमने इस कार्यक्रम में आपको सीमा मिश्रा और बद्री व्यास के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाए। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीतकार लोक रंग अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये खत हमारे पास आया है अंबेडकर कॉलोनी शिवपुरी से और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सन्नू, जिया, रूहान, टिक्कू और मिक्कू। एक और फरमाइशी खत है नेपाल पैलेस से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नोपो, ऋषिका और रॉबिन का। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

त्रिशूल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में साहिर की रचना थी और खयाम का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है रिंगिनी ततरेंगी छत्तीसगढ़ से। दिनेश कुमार वर्मा, करुणा वर्मा और प्रियंका गौरव बंछोर से आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

साजन फिल्म का गीत अभी आपने सुना एस पी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी को ये बता दें कि आप अपनी फरमाइश के गीत भेज सकते हैं आकाशवाणी शिवपुरी में। अगला फरमाइशी खत हमारे पास है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से, नारायण भावखड़ से, ललिता खड़ से, परीखर से, गणेश कार्तिक भावखड़ से, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी का। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये गीत।

कयामत इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में, समीर की रचना थी, नदीम शुभम का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है कोलारस मानीपुर से। गोपाल, कपिल, रीना, गुड्डू, बबली, अक्षर, चुन्नू और निमिषा का आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

आशिकी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में, समीर की रचना थी, नदीम श्रवण का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है मलोट कैंप पंजाब से। सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुपारिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी का एक और फरमाइशी खत है। एरोड्रम थाना वन्ना नगर इंदौर से

संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा, विक्की रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये।

अमीन साबरी और फरीद साबरी के गाए हुए इस कव्वाली के साथ ही, ये जो कव्वाली थी सिर्फ तुम फिल्म से ली हुई थी, के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी, कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने विदाई दी। पल्स पोलियो अभियान के तहत ग्वालियर जिले में बनाए गए 2356 बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाकर पोलियो रक्षा कवच पहनाया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर भी पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उन्नत कृषि पर संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों के जैविक व प्राकृतिक खेती पर अनुभव सुने, इसके साथ ही उनसे सीधा संवाद किया। डॉ. यादव ने ग्वालियर में मूर्त रूप लेने जा रही अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भी रिमोट के जरिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर के खुरैरी व ग्राम जहांगीरपुर में इस हाईटेक नर्सरी के प्रथम चरण का कार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली इकाई एवं बहुस्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर वृहद स्तर पर पौधे रोपने और उनकी सुरक्षा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़क सुरक्षा के उपहार स्वरूप जिले के लगभग 50 लोगों को हेलमेट भी वितरित किए। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। शक्ति दीदी नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाएं पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर का मोर्चा संभालकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस माह भी कई जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी बनी हैं। जिले में अब तक 123 जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रदेशव्यापी विशेष साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के अंतर्गत बीते दिनों ग्वालियर पुलिस द्वारा रोटरी क्लब ग्वालियर और भारत विकास परिषद शाखा ऋषि गालव के सहयोग से विशाल साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और

0: आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सुरक्षित डिजिटल समाज बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल सिंह जग्गा द्वारा जिला खेल परिसर कंपू से हरी झंडी दिखाकर किया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देश भर में 200 स्थानों पर हुए कार्यक्रमों के साथ ग्वालियर में भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम से इस योजना के तहत देश भर के लाभार्थियों के खातों में 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की, जिसमें कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर से जुड़े कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के खातों में पहुंची लगभग 4 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की 4 बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में जापान में आयोजित हुए महिला अंडर-18 हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्वालियर की 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों नौशीन नाज, नम्मी, गीताश्री, स्नेहा दावड़े और महक परिहार का कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी, आलेख नवीन श्रीवास्तव का था और वाचक थे अभिषेक कटियार।
2: FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको मेहंदी हसन और गुलाम अली के गाए हुए कुछ गजलें सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गजल के साथ।
3: पैराहने जाम बहुत मुश्किल गज़ल है समझने में भी गाने में भी, तो वो उनकी फरमाइश एक शेर पेश कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर मैं मेरे तक फरमाइश की है, फिर उसके बाद अनाउंस करूँगा।

0: अभी आपने सुना मेहंदी हसन और गुलाम अली की गाई हुई ये गज़ल। श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में और भी गज़लें आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से, और इस कार्यक्रम में हम आपको मेहंदी हसन और गुलाम अली की गाए हुए कुछ गजलें सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

अभी आपने सुनी गुलाम अली की गाई हुई ये गज़ल। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये गज़ल।

अभी आपने सुनी गुलाम अली की ये गज़ल, लीजिए सुनिए और एक गज़ल।

श्रोताओं, गुलाम अली की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अभी यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 10:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

पत्थर की सनम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

संगम। इस फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

गीत, फिल्म का गीत आपने सुना अभी, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में हसरत जयपुरी की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ों में अभी आपने सुना पहचान फिल्म से लिया हुआ ये गीत। इंदिवर की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत था। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर का एक गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गुलशन बाबरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शर्मीली से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की, नीरज ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

ज़माने को दिखाना है। ये फ़िल्म का नाम है, आवाज़ें हैं आयशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, और मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है। आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शागिर्द से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

जा। अगला गाना है सागर, फिल्म का आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के। जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है।

राम बलराम, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म का नाम राम बलराम।

रामपुर का लक्ष्मण, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और आर डी बर्मन के संगीत है। सुनिए ये गीत।

प्यासी शाम, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

ये गीत था प्यासी शाम का। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और हेमलता की आवाज़ में। परख फिल्म का नाम है, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नदिया के पार से, आवाज़ें हैं जसपाल सिंह और हेमलता की और साथ में आवाज़ है चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, फिल्म का नाम नदिया के पार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप, माई जीओवी पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस तीसरे संस्करण में करीब 7000 खरीदार और 20000 से अधिक कपड़ा उत्पादों की भागीदारी देखी जा रही है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और 20 से अधिक देशों के नीति निर्माता और विचारक सहित लगभग 350 वक्ता भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके उद्देश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और मिनिस्टर्स की बैठक प्रस्तावित है। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त जावेद खान। शुरुआत करते हैं फिल्म पूनम के एक गाने से। आवाजें हैं चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। हसरजीपुरी ने इस गाने को लिखा है, अन्नू मलिक का संगीत है और इस गाने की फरमाइश हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद।

ये गाना था फिल्म पूनम का, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा था, अनु मलिक ने संगीत दिया था। और अगला गाना जो है वो मुकेश की आवाज़ में है। हम उस गाने की, और जो गाना आपने सुना, दोनों गाने की इकट्ठी फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं। अगला गाना है मन मंदिर का, आवाज़ मुकेश की है और साथ में लता मंगेशकर हैं। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इन दोनों की मिलीजुली फरमाइश इस तरह है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है घंटा घर चौक खंडवा से। लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। और ये खत आया है औरंगाबाद से। लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने गूंज उठी शहनाई से, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है। भरत व्यास ने इस गाने को लिखा है, वसंत देसाई ने इसको संगीत से सजाया है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया असमा, सालिया शोएब, मुजतबा रऊफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से लिखने वाले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना है फिल्म तेरा चेहरा। इस फिल्म का आवाज़ अदनान समी की है, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत अदनान समी का ही है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाब दास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लचनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सलिक पुजारी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले ने। और ये ख़त आया है, लिखने वाले हैं अमित खातर खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल। इन्होंने ये ख़त लिखा है सारणी ज़िला बैतूत से। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने सूरज और चंदा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मालवा रेडियो श्रोता संघ से लिखने वाले प्रमल्ला गंज आलोड जिला रतलाम से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल और साथ में प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं महर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राहे, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ और आकाश हाइट्स बहादुरा नगर नागपुर से लिखने वाले हैं शैलेश गायकवाड़, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गायकवाड़ परी, इन्होंने ये गाने को पसंद किया। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में एक गाना, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोन से, आमिर खान, फायज़ ज़फ़र और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और बक्सर बिहार से लिखने वाले हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। गाने के गाना लिया है हमने फिल्म मधुमती से, और आवाज़ मुकेश, लता मंगेशकर की है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, सलील चौधरी का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:25 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंसना मना है, धारावाहिक की 12वीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम। मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना? खैर छोड़िए, अरे ये क्या, गोपाल तिवारी आपके लिए एक ऐसा आइटम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको यकीनन आनंद आ जाएगा।
1: आइए शुरू करता हूँ, बच्चों के लिए खास कुछ आइटम। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल रिक्शे में घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर लौटते हैं तो उनकी अपनी बड़ी प्यारी मीठी मीठी बातें होती हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूं। एक बच्चे ने दूसरे से कहा कि मालूम मैं आज ना आ रही थी ना तो ना मैंने ना चींटी देखी। अच्छा कितनी? मैंने ना 3 चींटी देखी। अच्छा 3 चींटी देखी तो कैसी कैसी चींटी थी? एक चींटी ना काली थी, एक चींटी लाल थी और एक चींटी सफेद थी। अच्छा तो एक काली थी, एक लाल थी, एक सफेद थी, तो काली वाली काली क्यों थी? बच्चों के प्रश्न बड़े भोले होते हैं तो उसके जवाब भी बड़े भोले होते हैं। नहीं, काली वाली ना कॉलरीज में रहती थी इसलिए काली थी। अच्छा और लाल वाली लाल क्यों थी? नहीं ना, लाल वाली जो थी ना वो पहले लाल नहीं थी, फिर ना वो खूब खून पीती थी तो लाल हो गई। अच्छा ये होता कि वो सफेद

0: सफेद वाली सफेद क्यों? मालूम सफेद वाली भी सफेद नहीं थी, वो तो पहले काली थी। तो सफेद कैसी हो गई? नहीं, वो लवली बबली क्रीम लगाती थी। तो चींटियों की बात चली, एक और ने कहा कि ये मालूम चींटी पे हमको भी याद है, हमारी एक चींटी सहेली है, उसने एक दिन बहुत बढ़िया बात बताई थी कि मालूम वो ना मतलब बाजार जा रही थी, तो दोनों में चर्चा हुई थी उसकी सहेली से। क्या चर्चा हुई थी? वो बोली कि उसका ना एक दोस्त भी है बॉयफ्रेंड मालूम। अच्छा, चीटी का बॉयफ्रेंड तो चीटा होगा? नहीं, चीटी का बॉयफ्रेंड चीटा नहीं था, हाथी था।
1: अच्छा
0: क्या बोला? तो क्या हुआ, चीटी ना बाजार जा रही थी, तो चीटी से हाथी ने पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही? दीदी बोला वो तो बॉयफ्रेंड, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ तो बोला कि तुम कहाँ जा रही चीटी, चीटी कहाँ जा रही? तो चीटी ने बोला मैं बाजार जा रही हूँ, मैं अपनी ड्रेसेस सिलवाने के लिए। अच्छा तो कपड़ा कितना लिया? मेरे को जितना लगता है। अच्छा क्या बनवाओगी? मैं फ्रॉक बनवाऊंगी। अच्छा कपड़ा बचे तो मेरे लिए एक निक्कर बनवा लेना।
1: बच्चों की बात अलग और निराली होती है। बच्चों की बात के साथ साथ कुछ और लतीफे भी मैं आपकी नजर करूंगा। और बच्चे जब बात अपनी पेश करते हैं तो एक बच्चे ने कैसी बात रखी?
0: आदरणीय उपस्थित सज्जनों, भाइयों, मेहताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जो भी पेश करूंगा पूरी सावधानी के साथ पेश करूंगा, अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो पैसे दे के सुधरवा सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको एक एक छोटा सा शेर सुनाने जा रहा हूं।
1: सुनाइए। अब बच्चे ने शेर सुनाया।
0: सपेरे सपेरे बामियों पे बीन लिए बैठे हैं, सपेरे बामियों पर बीन लिए बैठे हैं,
1: सांप भी सियाने हैं दूरबीन लिए बैठे हैं। बच्चों की बहुत बढ़िया बढ़िया बात। एक और बहुत बढ़िया बात मैं बता रहा हूं आपको कि स्कूल का माहौल, क्लासरूम इस आइटम का नाम है, क्लास लगी हुई है गांव का ये स्कूल, और कुछ शहर से जुड़ा हुआ गांव है तो कुछ शहरी कुछ गांव ग्रामीण संस्कृति दोनों उसमें मिली जुली है। आधुनिक युग के बच्चे हैं, टेलीविजन संस्कृति का उन पर क्या असर है ये भी आप देखेंगे। और इस आइटम में अलग अलग क्लासेस हैं पर वो एक साथ भी कभी कभी बैठते हैं, वो देखिए। मास्टर जी का प्रवेश। खड़े हो जाओ
0: जी। गुरु जी।
1: बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने पापा को बुला के लाए?
0: वहां भी 10 मिनट में आते होंगे, हम बुला के लाए।
1: बोला आज नहीं बुलाया तो नाम कटवा देंगे।
0: सर वो हमारे पापा आ रहे, वो आ रहे।
1: और पापा जैसे ही आए, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार सर, आप लोग क्या है, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग को बुलवाते हैं, फैक्ट्री से छुट्टी लेके आना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, 400 रुपये कट जाते हैं मालूम है आपको? भाई देखिए, जरूरी हो जाता है तो बुलाना पड़ता है हम लोगों को। आपका बच्चा जो है इस समय बड़ी नटखट शरारत कर रहा है, बुलाना पड़ेगा हमको। क्या की शरारत इसने? सर ये क्या बताएं इसको, बहुत ऐसी शरारतें कर रहा है ये बच्चा जो है आपका, ये दूसरे बच्चों की शीश पेंसिलें चुराता है, रबड़ चुरा लेता है, स्लेट चुरा लेता है, कागज चुराता है भाई, पेन वगैरह। इधर आओ तुम, आओ। तुमको एक, तुम क्यों चुराते हो बच्चों की चीजें? और इतनी सारी जो शीश और रबर और कागज हम लाते फैक्ट्री से, वो कहाँ जाती हैं? ऐसे बच्चों की बहुत बढ़िया बात। एक और बात बच्चों की बता रहा हूं कि साहब मास्टर बच्चे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और बच्चों के एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एक फूल दे दिया, चर्चा शिकायत पहुंच गए मास्टर जी पास।
0: मास्टर जी जी है ना अपने अंदर का छुट्टू, इसने ना गुड़िया को गुलाब का फूल दे दिया।
1: अच्छा जरा तुम छुट्टू इधर आओ, गुड़िया तुम भी इधर आओ। क्या इसने तुमको फूल दिया?
0: जी दिया रहा, फूल दिया रहा।
1: अच्छा फूल दिया रहा। ये तुम्हारा ये फूल वूल का लेन देन कैसे चलने लगा है, कैसा क्या ये?
0: नहीं सर, वो पूरे शहर के लोग मना रहे थे त्योहार तो हमने भी दे दिया।
1: अच्छा पूरे शहर के लोग मना रहे थे, बच्चों का त्योहार क्या ये?
0: नहीं चाचा ने

0: नेहरू ने बताया था कि बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, और बच्चों को भी, बच्चे फूल जैसे होते हैं, बच्चों को फूल से बहुत प्यार होता है। चाचा को भी प्यार था, हमको भी प्यार था, हमने भी प्यार किया। वैसे भी एक बहुत बढ़िया बात कही है कि नाजुक टहनी को किसी फरिश्ते ने छुआ हो जैसे, फूल का खिलना किसी बच्चे की दुआ हो जैसे। बच्चों की तो बात अलग है साहब, और बच्चे, ये क्लास लगी हुई है, और मास्टर जी ने कहा अब ये बताइए कि कौन क्या पढ़ के आया है। चलिए तुम खड़े जाओ, तुम्हारा नाम?
1: जी होरी लाल।
0: बहुत बढ़िया होरी, तुम खड़े हो, तुमने क्या याद किया है?
1: सर हमने गिनती याद की है।
0: अच्छा सुनाओ, कौन सी गिनती याद की है?
1: सर वो वाली राम लखन वाली, राम लखन वाली गिनती।
0: हाँ सुनाओ गिनती, अब गिनती सुना रहे।
1: एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार।
0: ये इंतजार इंतजार यही लिखोगे परीक्षा में, फेल हो जाओगे, जीरो मिलेगा। पढ़ो, फालतू बात कर। तुम बेटा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है?
1: जी हमारा नाम है खताई।
0: हाँ खटाले रहो ताई। तुम सुनाओ बेटा, तुमने गिनती याद की?
1: जी सर हमने भी गिनती याद करी है।
0: सुनाओ गिनती सुनाओ। तो उसने भी गिनती सुनाई,

0: 15 16 17
1: अब ये रोन क्यों लगे तुम? गिनती गाते गाते रोन क्यों लगे?
0: शाही चढ़ाई थी वहां बहन में भी।
1: चलो बैठो, तुम लोग हर समय उधम करते रहते हो। तुम सुनाओ बेटा, तुमने गिनती याद करी?
2: हमने भी याद करी, बहुत अच्छी गिनती।
1: तुम सुनाओ गिनती। अब उसने सुनाई, मैं हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बैठो। ऐसी गिनती बिल्कुल याद कर रहे तुम लोग, बहुत हो गई गिनती विनती। अब ये बताओ कि कौन क्या बनेगा? तुम गड़े हो, तुम्हारा नाम?
2: हमारा नाम है चिलपिला।
1: क्या नाम है?
2: चिलपिला।
1: ऐसा नाम रखते हो यार, हैं? अब तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके बेटा क्या बनोगे?
2: हम सर बड़े होंगे ना तो हम डांगडार बनेंगे।
1: क्या बनोगे?
2: डांगडार बनेंगे।
1: डॉक्टर यार बोलना सीखो पहले, डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, मतलब ऑर्थोपेडिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कौन से डॉक्टर बनोगे?
2: जी सब नहीं, अपन अलग हटके।
1: अलग हटके? कौन से डॉक्टर?
2: वही वाले जो साबूदाना की गोली बांटते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम खड़े हो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है?
3: नाम हमारा नाम है हर हर।
1: कैसा नाम रखते यार हर हर। तुम ये बताओ कि तुम क्या बनोगे?
3: गुरुजी हम तो थोड़ा अलग बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे।
1: क्या बनेंगे?
3: इंजीनियर।
1: इंजीनियर बेटा, इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन सा इंजीनियर बनोगे? कंप्यूटर, कौन सा इंजीनियर बनोगे?
0: अरे अजय पंचायत हो गई बाबा,
1: इतने सारे इंजीनियर हो गए।
3: फिर
0: हम तो वही बनेंगे जो हमारे पापा हैं।
1: अच्छा, वेरी गुड, आपके पापा इंजीनियर है। हाँ हाँ, कौन सा इंजीनियर है?
2: चौका इंजीनियर, रोटी बनाते घर में।
1: लड़प बनेंगे। तुम बेटा, तुम खड़े हो और अपना नाम बताओ।
2: हमारा नाम है बहुरी बाबू।
1: बेटा बहुरी बाबू, तुम खड़े हो गए और बता रहे अपना नाम, अब ये बताओ कि तुम क्या बनेंगे, बनोगे?
2: हम अपने मन से कुछ नहीं बनेंगे।
1: क्यों?
2: जो आप बनवाओगे वही बने।
1: हम क्या बनवाएं? हम तो चाहेंगे कुछ अच्छा बनो,
2: लेकिन कैसे बने?
1: नहीं भाई, हम लोग चाहेंगे कि बच्चे अच्छा बने, कुछ अच्छा बने।
2: बन कहाँ से सकते हैं? आप लोग कोशिश ही नहीं कर।
1: हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, खूब पढ़ाते हैं।
2: कहाँ सर, जब भी हम स्कूल आते कभी आप गधा बनाते कभी मुर्गा बनाते।
1: एक बिटिया पीछे बैठी हुई, उसको भी गुरुजी ने, हाँ तुम्हें भी, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ।
4: जी सर, हमारा नाम छवरानी।
1: मरे तुम्हारी नानी। तुम बेटा ये बताओ कि तुम क्या बनोगी?
4: सर सर, मैं ना तिवारी जी के यहाँ गई थी, तो मैंने उनके यहाँ देखा कि शादी हुई ना, शादी होने के बाद फिर फेरे हुए, जयमाला हुआ, इतना अच्छा लगा ना।

0: तो मैंने भी सोचा ना सर कि मैं जब बड़ी होंगी ना तो फिर मैं भी शादी कर।
1: बहुत अच्छी बात, बच्चों का साथ देखो, छोटे बच्चे हैं, आगे तक की सोच रहे हैं, मतलब देखो आप, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा तुम खड़े हो, तुम्हारा क्या नाम?
0: सर मेरा नाम गोपाल।
1: अच्छा बेटा, गैया कहाँ तुम्हारी?
0: बाबू चराने गए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बाबू चराने का गया। तो बेटा गोपाल तुम बताओ, देखो ये क्लास का बहुत अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और स्कॉलर स्टूडेंट है, आप सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। बेटा तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या बनोगे?
2: हम सोच रहे कि अलग हटके हो ना, लगे कि अपन कुछ बने। हाँ लगे कि आप कुछ बने, क्या बनेंगे बताइए? सर हम सोच रहे कि हम गिर्रू के बाप बने। बहुत हो गई, बहुत हो गई, क्लास में डिस्टरबेंस बहुत हो गया। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे, समझ गए? सब तैयार हैं?
3: हाँ।
2: चलिए अब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
0: जी सर हमारा नाम दीपक है।
2: अच्छा नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम कभी आज तक पास ढंग से नहीं हुए हैं? सप्लीमेंट्री आती हर बार तुमको, फेल हो जाते हो, चार साल से चौथी में पढ़े हो। नाम दीपक और ज्ञान पंजी का नहीं है।
0: सर वो आपको एक चीज नहीं मालूम।
2: क्या नहीं मालूम हमको?
0: दिया तले अंधेरा होता है।
2: अच्छा अब हमको पढ़ाओगे तुम।
1: तुम्हारा क्या नाम?
4: सर हमारा नाम बड़वारी लाल। बड़वारी लाल तुम खड़े हो, तुमको क्या दिया था कल होमवर्क? क्या दिया था?
2: सर निबंध लिखने।
4: क्या सब्जेक्ट क्या था?
2: आलस्य।
4: अच्छा
2: लिख लाए?
4: जी सर। कितने पेज में लिखा?
2: 12 पेज में सर।
4: अच्छा लाओ दिखा। अरे इसमें लिखा क्या है यार, कहीं कुछ नहीं लिखा इसमें।
2: अच्छा सर आखिरी पेज में तो देखो आप, आखिरी पेज में। अच्छा विशेष नोट, यही है आलस।
4: अरे तुम तड़प
2: कैसे, कैसी तुम लोग बात करते हो। अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
5: जी बनवारी लाल।
2: बनवारी लाल तुम खड़े हो जाओ और तुम ये बताओ कि हवालात किसे कहते हैं?
0: हवालात हवालात हवालात हवालात, माजी बोले भैया चार बार गए कहाँ गए, मैं किसको कहते, उनसे पूछ लेते पहले मालूम होता हवालात किसको।
2: सर जल्दी बताओ।
0: सर जब कोई आदमी हवा में लात मारे तो उसे
2: तो उसे हवालात कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कौन सा चारा है जिसको कोई नहीं खाता?
1: चारा माने घास पत्ती ये सब चारा। हाँ सर वही, हम उसी के बारे में सोच रहे। बताओ जल्दी, ऐसा कौन सा चारा जिसे कोई नहीं खाता?
2: सर भाईचारा।
1: भाईचारा।
2: अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
5: जी बद्री प्रसाद।
2: बद्री प्रसाद ठीक है बेटा। तुम ये बताओ काल यानी कि टेंस कितने होते हैं हिंदी में बताओ?
0: काल माने कितने होते हैं?
2: सर 6, आधा दर्जन।
1: कहाँ पढ़े हैं तुम?
2: हिंदुस्तान में तो अभी तक 3 ही हमने पढ़े थे, ये 3 और कहां से लगा दिए सप्लीमेंट्री?
1: वो 3 आपने पुराने समय में पढ़े होंगे।
2: हाँ हाँ भूत भविष्य वर्तमान, अभी नए कौन से काल हो गए भाई?
1: कहने के सर हमने इजाद किए हैं अभी,
2: नया इन्वेंशन है। अच्छा कौन कौन से?
1: पहला तो तत्काल,
2: दूसरा अकाल और तीसरा कंकाल।
6: हंसना मना है,
7: हंसना मना है,
6: रे हंसना मना है,
7: हंसना मना है।
6: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
7: हंसना मना है।
6: एक बेचारा आपको हंसाने में मशगूल है और दूसरा उस बेचारे को कोचने में है। ये दूसरे कौन हैं? संजय गायकवाड़, जरा इनकी भी तो सुने।
8: शहर में अतिक्रमण हटाया गया, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ घर में गया तो वहाँ पे एक माताजी थी जिनका आधा कमरा भी अतिक्रमण में चला गया था। मैंने माताजी से नमस्कार किया तो अम्मा ने कहा, नमस्कार बेटा जी, बताओ कि जी फिर से अतिक्रमण हटाने वाले लोग नगर निगम वाले कब आएंगे? हमने कहा, अम्मा आपका तो आधा कमरा चला गया, आप फिर से बुला रही हूँ। कहने बेटा पूरा चला जाए कोई गम नहीं। हमने कहा, क्यों अम्मा ऐसी क्या बात है? कहने बात कुछ नहीं बेटा, बात तो

बहुत अच्छी हुई, पिछली बार जब नगर निगम वाले अतिक्रमण हटाने आए थे तो स्टूल पे नगर निगम का एक कर्मचारी बैठा था, उसने हमारी लड़की से एक बार पानी मांगा तो हमारी लड़की ने दूसरी बार में चाय दी, न जाने कैसी क्या बात हुई कि 13 फरवरी की निकल आई। अब हम सोच रहे हैं कि दोबारा फिर से उन लोग नगर निगम वाले आए तो छोटी वाली को निपटा दें। शिक्षा के साथ में पूरे भारतवर्ष में इस समय सामान्य ज्ञान योग अभ्यास की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। एक गांव के पंडित जी जब शहर में अपने भाई से मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि योग की क्लास चल रही थी, तो अपने भाई से पूछा, कहने भैया जी जब सब बताओ क्या है जी पढ़ाई के अलावा, जी आप लोग बैठे हैं, कोई लेटा है, कोई खड़ा है, कोई सांस रोके, ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि क्या है कि हम लोग योग की क्लास भी लगाने लगे हैं, इससे बच्चे का जो स्वस्थ है और मन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। अरे कहने ऐसी बात है तो हमारे गाँव में भी योगा होगा। तुरंत पहुँचे पंडित जी। पहुंचने के बाद में क्लास जो लगी हुई थी तुरंत अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को बोला, चलो रे बंद करो, चलो सबको पढ़ाई बंद करो और पीठ के बल लेट जाओ और टांगे ऊपर करो रे सबको। हाँ कलुआ तुम भी टांगे ऊपर करो और साइकिल कैसे चलाते ऐसी घुमाओ हाथ, बिल्कुल पैर ऐसे घुमाओ। अब साहब देखा कि सब बच्चे पैर घुमा रहे हैं लेकिन एक लड़का जो था वो पैर नहीं घुमा रहा था, वो केवल पैर उठाए हुए था। उससे पंडित जी ने पूछा, कहले क्यों रे तू साइकिल क्यों नहीं मार रहा है, पैडल क्यों नहीं मार रहा है, साइकिल चला साइकिल चला। कहले पंडित जी हमारी साइकिल ढलान पे है। हमारे शहर में एक थिएटर ऐसा है साहब जहां बहुत छोटे बच्चों का जाना बिल्कुल मना है। हमारे भैया भाभी घर के पिक्चर देखने के बहुत ज्यादा शौकीन, तो साहब हुआ ये कि नई नई फिल्म लगी, हमारे घर में छोटे से भतीजे ने जन्म लिया, तो हुआ ये कि जब थिएटर पहुँचे तो थिएटर पहुँचने के बाद में भाभी जी ने प्रश्न किया कि आप तो 2 टिकट लेके आ गए हो लेकिन मैं जब जाने लगूंगी और गेटकीपर ने पूछ लिया कि ये क्या है तो फिर मैं उससे क्या कहूँगी? तो हमारे भाई साहब ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहने कुछ नहीं, तुम टावल में लपेट लो बच्चे को, कपड़े में ऐसा रख लो, समझ गई ना, और गेटकीपर अगर तुमसे पूछता है तो तुम बोल देना उसको कि कुछ नहीं हम लोग जल्दीबाजी में खाना खा के नहीं आए हैं, टिफिन ले आए हैं, इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। कहले हाँ ठीक है। 2 टिकट जैसे ही मिले तो भैया पहली टिकट में चले गए, दूसरी टिकट में जैसे ही भाभी जी जाने लगी तो गेटकीपर की नज़र पड़ी और गेटकीपर ने तुरंत कहा, एक मिनट बहन जी एक मिनट, ये क्या है? तो बहन जी ने कहा, ये कुछ नहीं, ये टिफिन है, हम लोग ना इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। गेटकीपर तुरंत बोला, अच्छा अच्छा ठीक से पकड़ो, दाल बह रही। पिछले दिनों साहब एक समाचार पत्र में, मैं किसी भी समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, एक समाचार पत्र में एक वैकेंसी निकली, एक विज्ञापन आया, आवश्यकता है एक ऐसे कर्मचारी की जिसको वेतन नहीं मिलेगा भोजन मिलेगा। शहर में बहुत सारे बेरोजगार हैं, सुबह के वक्त एक बेरोजगार पहुंचा, कहने भाई साहब नमस्कार, कहने नमस्कार नमस्कार, कहने भैया वो भाई साहब कहाँ रहते हैं जिनने पेपर में विज्ञापन दिया था? अरे कहने ठीक तो हमसे टकराए, वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, हमें ने दिया था वो विज्ञापन। कहले भैया तो फिर इंटरव्यू कब है? कहले इंटरव्यू तुम्हारा शुरू हो चुका है। कहले अरे शुरू हो गया? कहले हाँ। कहले तो आपने वो पेपर में लिखा है कि वेतन नहीं मिलेगा भोजन मिलेगा, तो वेतन काय को नहीं मिलेगा? कहले वेतन से भोजन ही खरीदोगे ना, हम डायरेक्ट भोजन दे रहे, कौन सा गलत कर रहे हैं? तो कहले भैया फिर कब से आए? कब से नहीं, अभी से ड्यूटी शुरू, इंटरव्यू खत्म। वहाँ देखो खुटी में क्या टंगा है? कहले झोला। कहले झोले में 2 टिफिन होंगे? कहले हाँ भैया 2 ही टिफिन है। कहले बाहर निकलो, कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ भी लंगर भंडारा चल रहा हो वहाँ से 2 टिफिन भरवाओ, एक हमें दो दूसरा खुद खाओ, भोजन मिलेगा वेतन नहीं। एक जगह एक प्रोग्राम चल रहा था गीत संगीत का, वहाँ पे एक गायिका कलाकार आई और उन्होंने शुरू किया, जिमी जिमी आजा आजा, जिमी जिमी आजा आजा आजा रे मेरे पास, हे जागे सारी रात पुकारे तुझको। ये कोई गीत था, वो गा रही थी मैडम, अचानक घर का कुत्ता

0: तोड़ के स्टेज के करीब आ गया और शुरू हो गया। तुरंत अनाउंसर साहब आए, कहले अरे भाई साहब गाना आना बंद हो गया। कहले ये घर का किसका घर का कुत्ता है भाई जो स्टेज पे आ गया? तो एक महाराष्ट्रियन भाव गया, मेरा घर का कुत्ता ना वो, मेरे घर का कुत्ता है। अरे कहले भैया तो इसको घर में बांधो ना। कहले घर में ही बांधा था ना, तुम्हारी मैडम क्या बोल रही, जीमी जीमी आजा आजा, वो नाम लेके बुला रही, कुत्ता आ गया। कहले आ गया तो भैया भोंक काहे को रहा है? कहले वो भोंक नहीं रहा, वो कह रहा तुमने पुकारा और मैं चला आया।
1: राजेश मिश्रा अपनी बारी आने के पहले ही लतीफों की लंगोट कसकर आपको हंसी के अखाड़े में ले जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं आप चित्त होते हैं या पट हैं। लीजिए राजेश मिश्रा को सुने।
2: लीजिए एक व्यंग और पेश कर रहा हूं कि जिन साहिबानों की शादी हो चुकी है और उनको अगर पत्नी से परेशानी नहीं है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की बड़ी असीम कृपा उनके ऊपर है, और जिनको परेशानी है तो वो कभी कोई दूर नहीं कर सकता है, ये उनका भाग्य है। इसलिए अपन उस बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए कि एक जोक सुना रहा हूँ कि एक शव यात्रा चली जा रही थी। शव यात्रा के पीछे मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि भैया आखिर ये कौन मर गया, काई के लिए लाइन लगी हुई है। एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले मुझे नहीं मालूम। राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही। कई बार आपने देखा होगा कि काफी अगर मोटे ताजे व्यक्ति का अगर वजनदार मुर्दा होता है, कई बार कंधे लोग नहीं बदलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि जल्दी से कोई आ जाए वो कंधा बदल ले है। बड़ी देर तक अपना राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम, जो ही वो बदलते श्री राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, कंधा दूसरे के उसमें चला जाता है। ये लाइन बड़ी अजीब चली जा रही, एक के पीछे एक लाइन लगाए लोग चले जा रहे हैं। मैंने एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले हल्ला मत करिए, पीछे लाइन में आइए। फिर एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? राम राम सत्य सत्य, पता नहीं भैया, फालतू बात नहीं, पीछे आप लाइन में। ये क्रम चलता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने सोचा कि मैं सीधे शव के पास पहुंचूं। शव के पास पहुंचा तो मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? तो जो सज्जन थे, कहने मेरी पत्नी मर गई है। तो क्या, कैसे मर गई भैया, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, हमारे यहाँ कुत्ता था तो उसने काट दिया। अरे भाई साहब बड़ी मेहरबानी हो जाती, कुत्ता के काटने से आपकी पत्नी खत्म हो गई? जी हाँ साहब, मुझे दे दीजिए ना 2 मिनट के लिए, मैं 2 दांत गड़वा के अब भी ले आऊंगा। फालतू बहस मत करो। नहीं भाई साहब प्लीज दे दीजिएगा, हम बस अब भी ले जाके आपके कुत्ते अब भी छोड़ जाऊंगा। कुत्ता चाहिए? जी हाँ, पीछे लाइन में आओ।
1: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 12वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप, MyGOV पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस तीसरे संस्करण में करीब 7,000 खरीदार और 20,000 से अधिक कपड़ा उत्पादों की भागीदारी देखी जा रही है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और 20 से अधिक देशों के नीति निर्माता और विचारक सहित लगभग 350 वक्ता भाग ले रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की बैठक आयोजित होगी। राजधानी भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिलाओं का, महिला कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

बारिश का ये मौसम कुछ याद दिलाता है। बारिश का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास कराता है। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा हैं। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा हैं। ये मौसम भी आप सबकी याद दिलाता है। ठीक कहा ना सखियों, वाकई यादों के साथ जीना मुश्किल है। तो देखिए, आ गए हम आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर महिला सभा। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर, हर परिवार और हर महिला से जुड़ा है, और वो बात है सखियों, सजगता और सतर्कता का ध्यान रखें। जब आप डिजिटल तकनीक, आप समझ ही गई होंगी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा मोबाइल, जो आज के समय हमारे जीवन का हिस्सा जो बन चुका है। हो भी क्यों ना सखियों, अब खरीदारी के लिए जेब में नगद पैसे रखना जरूरी नहीं रहा। कोई भी दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग, अधिकतर जगह हम UPI QR कोड या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आसानी से भुगतान कर देते हैं। वाकई सखियों, सुविधा अच्छी है। सुविधा तभी तक अच्छी है जब तक उसके साथ सजगता और सतर्कता भी जुड़ी रहे, क्योंकि कहा भी गया है सखियों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल यही बात सखियों ऑनलाइन भुगतान करते समय भी पूरी तरह लागू होती है। सखियों, ध्यान से हमारी बातों को सुने, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में बिना देखे QR कोड स्कैन कर देते हैं या स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बनती है। इसलिए सखियों, आप किसी भी दुकान पर या ऑनलाइन भुगतान कर रही हैं तो सबसे पहले दुकानदार का नाम देखें। यदि नाम अलग दिखाई दे तो तुरंत भुगतान रोक दें और दुकानदार से पुष्टि करें। इसके बाद राशि ध्यान से देखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें सखियों, क्योंकि राशि में एक शून्य भी आपके हजारों रुपए गलत खाते में भेज सकता है। सखियों, ऑनलाइन खरीदारी में हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट या आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करें। बहुत कम कीमत, भारी छूट देकर किसी अनजान वेबसाइट पर भुगतान ना

करें। बात महत्वपूर्ण है सखियों, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी UPI पिन नहीं डालना पड़ता। पिन केवल तब डाला जाता है जब आप किसी को पैसे भेज रहे होते हैं। इस बात को याद रखें। और जैसा कि आज हमारी सखियां अपने छोटे छोटे व्यवसाय चलाकर ऑनलाइन के जरिए अपने व्यवसाय के शौक को अपना आय का साधन बना रही हैं, और ऐसे में डिजिटल भुगतान उनके काम का हिस्सा बन गया है। इसलिए सखियों, जितनी ज़रूरी मेहनत है उतनी ही ज़रूरी उस मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना है। तो आइए तीन छोटी सी बातें हमेशा याद रखें। पहली, भुगतान से पहले नाम, दूसरी राशि, तीसरी OTP और UPI पिन किसी से भी साझा ना करें, क्योंकि सजग ग्राहक ही सुरक्षित ग्राहक होता है सखियों। और अब इस बारिश के सुहाने मौसम का आनंद लेते हैं इस गीत से।

सखियों, आप बात करते हैं भारत सरकार की महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना की, और वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत माता पिता गार्जियंस अपनी बेटी के नाम से बैंक या डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं, जो बेटी की शिक्षा और भविष्य के लिए मजबूत आधार है। और इस योजना में बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है सखियों, जो बहुत ही कम राशि से इसमें मध्यम परिवार भी आसानी से लाभ ले सकते हैं। सखियों, इसमें सरकार द्वारा ब्याज दर भी अच्छी दी जाती है और पूरी तरह सुरक्षित। सखियों, सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा लाभ जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। 18 वर्ष की आयु के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए खाते से कुछ

राशि निकाली भी जा सकती है। वाकई सखियों, आज के समय में बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, जो केवल बचत योजना नहीं है बल्कि बेटियों के उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो खाता जरूर खुलवाइए। और आपको खाता कहाँ खुलवाना है, तो आप किसी अधिकृत कमर्शियल बैंकों में जाकर या अधिकृत सरकारी डाकघर में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। और एक जरूरी बात सखियों, आप उनकी इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं। तो सखियों, इस जानकारी को आसपास के ऐसे लोगों को जिन्होंने खाता नहीं खुलवाया या जानकारी में कमी रह गई, तो पूरी जानकारी जरूर दें ताकि अधिक से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ ले सकें। बिल्कुल, हमारी सखियां योजना का लाभ ले रही हैं और सखियां आज आत्मनिर्भर भी हैं। और इसी आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है क्रम मेरी उड़ान। आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान।

0: सखियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत और लगन से अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और इसी का परिणाम होता है कि हम अपने काम में परिपूर्ण साबित होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि एक नाम जो कहीं गुम था लोगों के सामने उभर कर आ ही जाता है और ऐसे ही नाम को उजागर करता है मेरी उड़ान। आज हम बात कर रहे हैं टिफिन सेंटर की संचालिका मनोरमा सेठिया से। मनोरमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी
0: मनोरमा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे आया कि आप टिफिन सेंटर खोलेंगी।
1: मेरे मन में ये विचार ऐसे आया कि मेरे पास कुछ बिजनेस नहीं था और बच्चों को पढ़ाना, बड़ा करना, हस्बैंड का भी कुछ काम धंधा नहीं था। हमारे पास में एक आंटी टिफिन सेंटर चलाती, उनने मुझे हट किया। तो हमने सोचा टिफिन सेंटर चलाए पर ग्राहक कहाँ से लेकर आएंगे। तो पास में एक भैया रहते थे, चार रोटी सुबह और चार रोटी शाम को वो ले जाते थे। ऐसे करके हमने टिफिन सेंटर चालू किया। हम जगह जगह भटके, हॉस्टलों में, बॉयज हॉस्टल में, हॉस्पिटलों में, वहाँ हमने अपना टिफिन टेस्ट करवाया। लोगों को खाना अच्छा लगा, लोगों ने फिर हमको ऑर्डर दिए। ऐसे करके एक टिफिन, दो टिफिन, हम इतने खुश होते थे कि चलो अपना टिफिन सेंटर बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे करके मैंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया तो आज 25 टिफिन तक मैं बना लेती हूँ, संतुष्ट हूँ।
0: तो घर के साथ साथ इस काम को आप कैसे मैनेज करती हैं?
1: बच्चे थोड़ा सहयोग करते हैं और हस्बैंड है मेरे, उनके पास भी कोई बिजनेस नहीं है तो वो भी पूरा पूरा सहयोग मुझे करते हैं। और अपना क्या टाइम लिमिट बना लो अपन कि भाई नहीं, इतना ये काम अपन को इतने टाइम में करना है और अच्छे से अच्छा करना है तो ग्राहक संतुष्ट होगा। ऐसे करके मैं इसको मैनेज करती।
0: कि आपको सब्जी भाजी भी लाना पड़ती होगी बाजार से, तो इस काम में कौन सहयोग करता है? आपने अपने सहयोगी रखे हुए हैं?
1: हाँ, सहयोगी रखे हैं, बाकी बच्चों के साथ जाके मंडी से मैं ही लेकर आ जाती हूँ सब्जी, ताकि अपन को थोड़ा उसमें फायदा ज्यादा हो।
0: इस काम को करने के लिए घर वालों का कितना सहयोग?
1: पूरा पूरा सहयोग है घर वालों का, क्योंकि करना यही है, इसी बिजनेस पे हम टिके हुए हैं। हमने सोचा और तो कुछ अपन कर नहीं सकते, घर बैठ के ये अच्छा बिजनेस है। घर वालों का पूरा पूरा सहयोग है मेरे साथ।
0: इस काम को आप अकेले करती हैं कि आप अपने साथ किसी को रखी भी हैं, जैसे टिफिन लाना, ले जाना, छोड़ना घर? और
1: हाँ, सहयोगी रखे हैं ना भाई, जैसे कोई गरीब बच्चा है तो उस वो पढ़ाई के साथ साथ टाइम निकाल के दोनों टाइम टिफिन बांट देता है तो उसका भी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है, उसको भी काम मिल जाता है और अपना भी काम हो जाता है। भाइयों भी रख रखी है एक दो महीने तो उनको सहयोग मिल जाता है, भाइयों को भी, और उनसे मेरे को सहयोग मिल जाता है ताकि मैं भी मतलब कुछ काम आगे बढ़ा सकूं।
0: मनोरमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितने टिफिन आप बना लेते?
1: मैं 20 से 25 टिफिन बना लेती हूं, ऑर्डर भी लेती हूं मैं। अगर सब्जी पूड़ी वगैरह या दाल वाफले के ऑर्डर लेती हूं मैं, 40-50 लोगों का तक बना सकती हूं मैं दाल वफले लड्डू। और उसके बाद अगर ज्यादा जरूरत लगती है तो मैं सहयोगी रख लेती हूँ।
0: तो आप अपने किचन में भी ऐसे सामान, ऐसे साधन जुटाई होंगी जिसके द्वारा आप बनाती होंगी और जिसमें काम करती होंगी, तो आप उसके बारे में बताएं।
1: सामान तो मैंने बहुत मुश्किलों से इकट्ठा किया है बहुत मुश्किलों से। अच्छा, मेरे को ऐसे हेल्प करने वाले भी मिले, परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने वाले भी मिले। मैंने अगर ये बिजनेस चालू किया तो बहुत से लोग हेल्पर ऐसे मिले कि उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। सामान भी मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया।
2: आपके सामान में क्या क्या है?
1: गैस भट्टा है, बड़ी कढ़ाई है, बड़ा कुकर है, करीब करीब बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो मैं नहीं ला सकती थी। पर
0: आपको खरीदने में आपकी पूंजी भी लगी होगी?
1: धीरे धीरे करके मैंने, डाइनिंग टेबल है, थालियां है, ग्लास है, सभी चीजों की जरूरत लगती है। घर पे भी लड़के खाना खाने आते हैं, उनको खाना अच्छा लगा तो ऐसे करके बिजनेस हमारा आगे बढ़ता गया।
0: टिफिन से

0: बहुत लोग खुश भी होते होंगे क्योंकि उन्हें घर जैसा खाना मिलता है, तो आपको कैसा लगता है?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे आंटी जी करके, आंटी जी खाना बहुत अच्छा बनाती है, आंटी जी आप भाभी जी खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप बहुत खुशी होती है। वो उनकी फैमिली वाले आते हैं किचन तक देख के जाते हैं कि आपके यहाँ साफ सफाई कितनी अच्छी है, आप खाना अच्छा बनाते हैं, बच्चे हमारे खुश है आपके खाने से, तो मेरे को बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल मनोरमा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दूसरों को इतना स्वादिष्ट और घर का बना भोजन खिला रही हैं। मनोरमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस व्यवसाय के बाद अपने आप को आप कितना आत्मनिर्भर समझते
1: हैं? इस व्यवसाय के बाद मैं अपने आप को आत्मनिर्भर इतना समझती हूँ कि अगर मैं बैठ के और अपने निर्देशन में भी भाइयाँ रख के काम करूँ तो अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ।
0: मतलब आप भाइयाँ रखी हुई हैं?
1: भाइयाँ मैंने रखी हुई है, टिफिन बांटने वाले रखे हुए हैं, बर्तन वाली है, रोटी वाली है, कोई सब्जी साफ करने वाली है, ऐसी भाइयाँ रख रखी है। अगर मैं नहीं भी करूँ और आराम से बैठकर उनसे काम करवाऊँ तो भी मैं बिजनेस अच्छे से कर सकती।
0: तो अब हमारी ये सखियाँ जानना चाहेंगी कि इसमें आपकी इनकम का क्या है?
1: जितना समझ के और जितना समझदारी से अगर आप ये बिजनेस करोगे, आपका घर का खर्चा, खाने का खर्चा निकल जाएगा और वर्करों को भी आप दे सकेंगे, उसके बाद भी थोड़ा अपना हाथ खर्चा निकल जाए, इतना आप कर सकती है। अगर आप बड़े पैमाने पे करें तो उसके लिए आपको अच्छी जगह लेनी पड़ेगी, वर्कर ज्यादा रखने पड़ेंगे, मेहनत तो है इस काम में पर संतुष्टि हो।
0: मनोरमा जी, आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, जाहिर सी बात है कि इस काम को आगे करने के लिए हमारी सखियां भी आपसे जुड़ना चाहेंगी, तो वो किस तरह से इस काम की शुरुआत करें और कैसे?
1: अगर कोई महिला ये काम करना चाहती है तो वो दो टिफिन से भी चालू कर सकती है। अगर आपके खाने में टेस्ट रहा तो दो से चार होंगे, चार से छह होंगे और परिवार में इतनी हेल्प मिल जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपना खुद का खर्चा निकालने में बहुत सहायता मिलेगी और आप बिजी रहेंगे। बहुत सी महिलाएं मेरे साथ काम करती थी, आज वो देखते हुए उनने खुद ने अपने टिफिन सेंटर डाल लिए, परिवार उनका वो भी चला रही है। बहुत सो के हस्बैंड काम नहीं करते हैं तो भी उनको सहयोग मिलता है कि ये बिजनेस अच्छा है, थोड़ी आइडियाज मेरे से ले लेते हैं वो, तो ठीक है मैं आइडियाज बता देती हूँ और उनको हेल्प मिल जाती है।
0: मनोरमा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी सुनने वाली सखियों को और हमें भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लाता है, लेकिन नमी और गंदगी भी बढ़ा देता है। ऐसे में चेहरे के साथ साथ हाथों और पैरों के नाखूनों की देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। तो सखियों, घबराने की बात नहीं, रूपलावण में नाखूनों की देखभाल आप कैसे करें इस मानसून में, बात करते हैं सखियों। क्यों बरसात के मौसम में, जैसा कि आप जानती हैं कि नमी, बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, ऐसे में नाखूनों की सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटें। दूसरी बात सखियों, यदि नेल पॉलिश लगा रही हैं तो बीच बीच में नाखूनों को बिना नेल पॉलिश के भी रहने दें, ताकि उनकी प्राकृतिक चमक और मजबूती बनी रहे। इसी तरह सखियों, कभी कभी पैरों के नाखून ज्यादातर कड़े और बेजान से लगने लगते हैं, उनको काटना मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप कुछ देर हल्के गुनगुने पानी में सेब का सिरका मिलाएं और कुछ देर के लिए डुबो कर रखें, फिर सादे पानी से धो लें। यह नाखूनों के फंगस इन्फेक्शन को दूर कर चमक बढ़ाता है और काटने में आसानी होती है, मुलायम जो पड़ जाते हैं। इसी तरह सखियों, नाखूनों को हमेशा साफ और सूखा रखें इस बरसात के मौसम में, और खास बात, अपनी डाइट में विटामिन ई, बायोटिक और हरी सब्जियां शामिल करें, ताकि नाखून अंदर से मजबूत और चमकदार बने। बात बरसात की है तो फिर सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, गीत तो हमने सुनवा दिया और अब बढ़ते हैं फूड जोन की ओर। सखियों, मौसम कोई भी हो, हर मौसम कुछ अलग कुछ खास लेकर आता है। बात जब बारिश के मौसम की हो तो जगह जगह भुट्टे भुंजने की खुशबू आ ही जाती है। भुट्टे को चाहे सेक कर खाओ या फिर इसके अलग अलग व्यंजन बनाओ, हर बार इसका स्वाद मन को भाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं भुट्टा पुलाव फूड जोन में। तो सामग्री नोट करें सखियों, एक कटोरी चावल, दो बड़े चम्मच भुट्टे के दाने, अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, दो से तीन हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और तड़का लगाने के लिए एक छोटा चम्मच राई और जीरा, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा और अंत में कड़ी पत्ता और धनिया और नमक चाहिए स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच तेल या घी का। और अब बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं सखियों। सबसे पहले चावल को धोकर दो कटोरी पानी में आधा घंटे के लिए भिगो दें। अब प्रेशर कुकर में तेल गर्म करें, राई जीरा कड़ी पत्ता दालचीनी डालकर छौंक लगाएं। अब अदरक हरी मिर्च डालें, साथ ही पानी सहित चावल कॉर्न नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद कुकर बंद करें, 5-10 मिनट बाद प्रेशर बन जाने पर आँच से उतार दें, सीटी निकाल दें, कुकर खोलें। अब अनार व गरम मसाला डालकर सर्व करें, जो आपके खाने को हेल्दी तो बनाता है साथ ही फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है सखियों। तो बनाइए और खिलाइए इस बरसात के मौसम में और हमें भी बताइए बनाकर कैसी लगी। और अब सुनवा देते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में इस भींगते मौसम का आनंद आपने गीतों के माध्यम से लिया। आपको गीत भी पसंद आए होंगे, लेकिन सखियों बारिश गीत तक सीमित नहीं, बल्कि आपको इस बरसाती मौसम में धरती पर गिरती बूंदों को सहेजना है, उनका संरक्षण करना है। यदि हम इन बूंदों को सहेज लें तो वर्ष भर पानी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। सखियों, ये तो आप भी मानती हैं ना? इसलिए अपने घरों, विद्यालयों और कार्यालयों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था जरूर करें। सखियों, आप चाहें तो बरसात के पानी को अपने घर के आंगन में गड्ढा कर रेत, कंक्रीट, बजरी डालें और छतों की नाली से पानी जो बह रहा है एकत्र कर रिचार्ज पिट या सोखता गड्ढे में भेजें, जिससे वह जमीन में समाकर भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। आपको पर्याप्त पानी की सुविधा होगी और घर में सूख रहे बोर भी भरे रहेंगे। सखियों, थोड़ी जुगत तो लगानी होगी हमारी सखियों, इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और गर्मियों में जो हमने पानी की किल्लत झेली है ना, उससे निजात मिलेगी। तो सखियों, देर किस बात की, बारिश की इन अनमोल बूंदों को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी जुगत लगा के और इससे जो आपको खुशी मिलेगी वो आपके लिए अनमोल होगी गर्मियों के मौसम में, जब आपके पास पर्याप्त पानी रहेगा। सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति अपनी सखी नीलम चौरे को। नमस्कार।

0: ही अहंकार। केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार, जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए छाया परमार और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे छाया परमार और साथियों द्वारा गाए माली लोकगीत लोक संगीत के कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं वर्षा बंसीवाल द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा।
1: तो समान नागरिक संहिता UCC के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है।
0: कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी, जिसमें प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। एमपी टेक ग्रोथ के तहत 40,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे 34,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 28,000 करोड़ रुपए की लागत से AI डेटा सेंटर भी स्थापित होगा। कैबिनेट ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के खातों को डिजिटल बनाने के लिए दृष्टि पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 4 दिवसीय भारत टेक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। यहां वे देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशेंगे। इस दौरान राज्य में टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने की पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री कई कंपनियों के साथ एकल बैठकें भी करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मानसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। बात खेल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया। भारत ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। ये लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में पहला महिला टेस्ट मैच था। इंग्लैंड को 457 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 186 रन पर आउट हो गई। ये भारत की पिछले 11 टेस्ट मैचों में 7वीं जीत है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को बधाई दी है। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिले भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत गुना, शिवपुरी और रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन सीरम, सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में मेरा युवा भारत के तहत जिला पेंशन कार्यालय में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर स्वयं सेवकों को पेंशन विभाग की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन फाइल संचालन और डिजिटल प्रशासन की जानकारी दी गई। और बुरहानपुर जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
1: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक

0: अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी

0: और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
1: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं हम, जहां हम आपके पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे नगमे। तो कार्यक्रम में पहला गीत सुनवा देते हैं आपको, जो है फिल्म प्रेम पुजारी से, और इसकी फरमाइश हमें मिली है महेशवाड़ी तालुका मलकापुर से, शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की तरफ से। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें लिखा है। और एक और पत्र मिला है हमें महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत फिल्म प्रेम पुजारी से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: ओखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

एस जी बर्मन का संगीत, नीरज के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्रेम पुजारी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सपना संगीता रोड इंदौर से। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की तरफ से। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

इस जीवन का संगीत मजरूह के लिखे बोल मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ज्वेल थीफ से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की तरफ से, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का भी हमें पत्र मिला है। इसके अलावा एक और पत्र मिला है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म हसीना मान जाएगी से।

कल्याणजी आनंद जी का संगीत अख्तर रोमानी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हसीना मान जाएगी से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और फरमाइशी गीतों के क्रम में अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है गीता दत्त की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साहेब बीबी और ग़ुलाम और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से, रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और उनके पूरे परिवार की तरफ से। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक की ओर से भी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

हेमंत कुमार का संगीत शकील बदायूनी के लिखे बोल गीता दत्त की आवाज़ में गीत सुना आपने साहेब बीवी और गुलाम से। फिल्म का अगला और अंतिम गीत अब आपको इस कार्यक्रम का सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है फ़र्ज और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें नेपाल पैलेस सागर से। लिखने वाले श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फर्श से। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी तरह अपने पत्र हमें भेजते रहें। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा। कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता समिति ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। ये प्रतिवेदन 3 खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। प्रदेश भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। सुर्खियों में सुनवाया जाएगा रात 8:00। 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 पर सुन सकेंगे श्रुति अधिकारी का ध्रुपद गायन राग मालकौस। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के तहत 6,715 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके जरिए देश के प्रमुख सरकारी बैंकों में PO और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे बड़े पदों पर भर्ती होगी। योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का ज़रूर लाभ उठाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है ये गीत।

थे सोनू निगम। साथियों, किसी ने कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बशर्ते आप ज़रा हिम्मत तो करें। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बशर्ते आप ज़रा हिम्मत तो करें। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप ज़रा कोशिश तो करें। और जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं कीर्ति मीना अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म जन्नत 2 का ये गीत, राहत फतेह अली खान की आवाज़।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, आवाज़ें हैं कुणाल गांजावाला और ऋचा शर्मा की, अजय अतुल का संगीत और फिल्म का नाम है सिंघम।

श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ों में फिल्म बर्फी का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा स्वानंद करकरे ने और संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म एजेंट विनोद से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

कुमार का लिखा गीत सुनिए जिसे गाया है सोनू निगम और मीत ब्रोस अनजान ने। संगीत है मीत ब्रोस अनजान का और फिल्म का नाम है क्या सुपर कूल हैं हम।

0: श्रोताओं, फिल्म क्या सुपर कूल हैं हम कैसी गीत के साथ, फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील कर दी है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सुश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित हो रहा है। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए 10,800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू किया है। इसका शुभारंभ आज भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। ये अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज पंचायतों के ऑडिट को आसान बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा भी शुरू हो गई। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सत्र में सप्लीमेंट्री बजट और नए कानूनों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज किए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है।

0: पोठिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने लिखते हैं,
1: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
1: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
1: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
0: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
1: जी।
0: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
1: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
0: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
1: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
0: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है।
1: जी,
0: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
1: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
0: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
1: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
0: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी,
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थीं?
1: बिल्कुल होती थीं। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो

0: शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह।
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी,
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।

0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर।

0: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: विलन मगर जीवन में
1: कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने सदा बहार हो तुम बेमिसाल हो तुम देश की आवाज हो तुम
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम कैच द रेन। वाचन स्वर धारणा सचदेव का है।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कैच द रेन, पानी की हर बूंद भविष्य की गारंटी। आलेख वरिष्ठ पत्रकार अलीम बज़मी का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर बारिश की हर बूंद जो छत से टपकती है, सड़क पर बहती है या नाले में बहकर गुम हो जाती है, अगर वो हर बूंद जमीन के अंदर उतर जाए तो क्या होगा? जवाब है, हमारा कल सुरक्षित हो जाएगा। और यही सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन, जहां वर्षा हो जब वर्षा हो अभियान के पीछे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये है एक जन आंदोलन। और इस आंदोलन में मध्य प्रदेश ने जो मिसाल पेश की है वो पूरे देश के लिए एक सीख है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 योजना के तहत देश भर के शहरों में जल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहर इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। सोचिए करीब 1.25 लाख एकड़ में फैले तालाब, कुएं और झीलें जो कभी उपेक्षा के शिकार थे, आज फिर से जिंदा हो रहे हैं। और साथ ही 12,500 एकड़ में हरे भरे पार्क और हरियाली भी विकसित हो रही है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जमीन के नीचे। भूजल, यानी वो पानी जो हम बोरिंग और कुओं से खींचते हैं, वो लगातार घट रहा है। इसे बचाने के लिए 79 शहरों में करीब 2 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई जा रही हैं। बर्दवान और विजयनगरम जैसे शहरों में तो बारिश के पानी को सीधे गहरी जमीन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि साल भर पानी की कमी ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे अभियान में सबसे प्रेरक कहानी कहाँ से आई है, तो जवाब है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था, पूरे 100 दिनों तक 19 मार्च से 30 जून तक ये अभियान चला। और नतीजा क्या रहा? 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण। जरा सोचिए, नदियां, तालाब, कुएं, बावड़ियां जो बरसों से सूखी पड़ी थी या गाद से भरी थी, वो फिर से जीवंत हो उठी। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि ये सिर्फ सरकारी योजना नहीं रही, ये जनता का आंदोलन बन गया। गंगा दशहरा के मौके पर 8 लाख से ज्यादा जलदूत और आम नागरिक इस अभियान से जुड़े। सोचिए 8 लाख लोग एक साथ एक मकसद के लिए, पानी बचाने के लिए। ये उपलब्धि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराही गई। कई देशों के राजनयिकों ने मध्य प्रदेश के इस जल संरक्षण मॉडल की तारीफ की। भोपाल में रिचार्ज पिट यानी पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार जारी है, ताकि हर घर हर मोहल्ला वर्षा जल संचयन की अहमियत समझे। वहीं ग्वालियर में एक अनोखी पहल हुई, बंद पड़े हैंडपंपों का पुनरुद्धार किया गया। सोचिए वो हैंडपंप जो बरसों से खराब पड़े थे, उन्हें फिर से चालू किया गया। इससे न सिर्फ भूजल स्तर बढ़ा बल्कि स्थानीय लोगों को पानी की सतत उपलब्धता भी।

0: ये सुनिश्चित हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत, इतना निवेश क्यों किया जा रहा है? जवाब सीधा सा है, पानी हमारे भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह भूजल का दोहन हो रहा है, अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। मंत्रालय ने भी यही कहा है, आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है। आंकड़े खुद बोलते हैं, मध्य प्रदेश में 100 दिनों के भीतर 2 लाख से अधिक जल संरचनाएं तैयार हुई। शहरों में 1.25 लाख एकड़ जल निकायों का पुनर्जीवन हो रहा है। लाखों लोग इस मुहिम से सीधे जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं रहा, ये जनता का अपना काम बन गया। यही तो असली सफलता है किसी भी अभियान की, जब वो सरकारी फाइलों से निकलकर लोगों के दिलों में जगह बना ले। अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ छाता लेकर बाहर नहीं निकलिए, ये भी सोचिए कि क्या आपके घर, आपकी गली, आपके शहर में बारिश का पानी सहेजने का कोई इंतजाम है। क्योंकि जैसा कि ये अभियान कहता है, जहां वर्षा हो वहां वर्षा जल पकड़िए, जब वर्षा हो तभी जल संचयन कीजिए। यही है असली कैच द रेन।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम कैच द रेन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म कलंक का ये गीत। अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मीत ब्रोस, जोनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज़ों में, कुमार का लिखा गीत, मीत ब्रोस का संगीत और फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

place is heavy.

तुषार जोशी की आवाज में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम के संगीत वाला यह गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म छिछोरे से।

श्रोताओं, फिल्म छिछोरे के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद। कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
1: दंभ का स्तंभ खंडम दम त्रिशूल गाड़ के प्रलय का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: escena.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने

करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण लेकर मैं हूं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार बर्डे की भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा फल बगीचों में समसामयिक कार्य। रात्रि 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 और रात्रि 10। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे राग मालकौंस पर श्रुति अधिकारी का संतूर वादन। इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर किया जाएगा। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी बुधवार 15 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे बिहारी लाल यादव द्वारा गाई गजलें और 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे पंडित आसकरण शर्मा का गायन राग होगा भैरव। इसका प्रसारण 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है का 13वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे मशरूम उत्पादन तकनीक कम लागत अधिक मुनाफा विषय पर भेंट वार्ता। रात्रि 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:15 पर आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित पूर्वावलोकन कार्यक्रम। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नाटक आलिफ लैला की कहानी, जिसके लेखक होंगे डॉक्टर हामिद हुसैन और प्रस्तुति होगी शाकिर अली की। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे माधुरी ओक का गायन राग होगा काफी कांडा 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे कल यानी 15 जुलाई 2026 बुधवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सोश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर होगी चर्चा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। करीब 10,500 करोड़ रूपए के विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और भोजशाला विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय रोजाना करेगा सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह देने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सोश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित हो रहा है। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। इस मौके पर करीब 14.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक MRI प्रणाली का भी उद्घाटन होगा। सेमिनार में थाईलैंड, इसराइल और श्रीलंका सहित कई देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में करीब 10,500 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ी राशि शहरी अधोसंरचना विकास के लिए रखी गई है, जिसके तहत 8,445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क सरकारी गारंटी को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजगढ़ की कुंडलिया सिंचाई परियोजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया, जिससे राजगढ़ और आगरमालवा जिले में 1,39,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी अब महिला और बाल विकास विभाग को सौंपी गई है।
1: एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है महिला बाल विकास के संदर्भ में। आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था, और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन को वहां से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कई नए सुधारों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब कंटेनरों में उर्वरक और फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा सकेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। मंत्री ने बताया कि वैगन का डिजाइन अब उद्योग जगत भी तैयार कर सकेगा। उन्होंने कौशल प्रमाणन प्रणाली को 24 महीने में सभी परियोजनाओं में लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पंचायतों के ऑडिट को आसान बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा भी शुरू हो गई। इस प्लेटफॉर्म से प्रदेश की 23,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का ऑडिट अब घर बैठे किया जा सकेगा। ऑडिटर कहीं से भी पंचायतों के आय व्यय के रिकॉर्ड देख सकेंगे। पेमेंट गेटवे के जरिए नागरिक अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू किया है। इसका शुभारंभ आज भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ये अभियान 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसका मकसद युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। अभियान में सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग भी सहयोग करेंगे। जिलों में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कल समान नागरिक संहिता समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। ये प्रतिवेदन 3 खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। समिति को इस दौरान 9.5 लाख से अधिक जन परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की सिफारिश की है। ये प्रतिवेदन अब विधि विभाग को भेज दिया गया है और विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में रखे जाने की संभावना है।
3: यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से जरूर बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला विवाद पर आज रोजाना सुनवाई करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भोजशाला परिसर में पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग फिलहाल ठुकरा दी है। पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि परिसर के पास शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने साफ किया कि यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। भोपाल में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण किया। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सत्र में सप्लीमेंट्री बजट और नए कानूनों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। सरकार इस सत्र में करीब 11 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता का विधेयक भी शामिल है। इसी बीच विधानसभा सचिवालय में करीब 1 दशक बाद 181 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज किए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। इस साल अल नीनो के असर से अनियमित बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने किसानों से खरीफ फसल का बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। ये बीमा सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देता है। किसान बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप के जरिए बीमा करा सकते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार सामान्य से कम बारिश हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर

उत्पादित प्लॉटों के कर क्रय विक्रय और नामांतरण पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। छतरपुर और धार जिले में आज दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंडला में स्कूली वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग का 10 दिवसीय

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन का जय जमुना बहन की राम राम। भैया बहनों, अपन सब जानते हैं कि अपने जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहीं भी जाते कि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। जैसे हमें चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत साफ सफाई स्वच्छता को ध्यान रखें, अपने परिवेश अपने पर्यावरण की स्वच्छता को ध्यान रखें, अपने घर के अंदर और घर के आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से हम स्वच्छ रखें, ताकि हम और हमारे परिवार के दूसरे अन्य सदस्य हैं वे पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। ऐसे स्वस्थ रहो, अगर हमें ज़रूरी है तो पर्यावरण को भी साफ सुथरा रहो बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार बहुत सारी बीमारियाँ गंदगी से ही पनपती हैं। गंदगी में पैदा होने वाले जीवाणु रोगाणु कीटाणुओं के माध्यम से बीमारी हम तक आ जाते हैं। जैसे भैया अपन को जो साफ सफाई है वह को विशेष ध्यान रखना है। अपने पर्यावरण में अपन देख रहे हैं कहीं भी कूड़ा करकट इकट्ठो दिख रहा हो है तो अपन वह को सही निराकरण करें, निपटान करें। या तो वह अपन कहीं दूर फेंकवाएँ, या फिर वह अगर जलावे की स्थिति में है तो वह थोड़ा सा अपन तीली लगा के मैं जला के नष्ट कर दें। नालियाँ हैं, नालियों की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। अब देखो बरसात को मौसम है, कभी बारिश हो जाते तो अपन देखते हैं अगर कहूँ नाली साफ सुथरी नहीं है तो वहीं पानी इकट्ठा हो जाते, पानी की निकासी ठीक तरह से नहीं होते और वो ठहरे हुए पानी में मच्छर या अन्य रोगाणु जीवाणु जन्म ले लेते हैं और वो फिर अपने तक आके अपन को नुकसान पहुँचाते हैं। तो समय समय पर मच्छर रोधी दवा को भी छिड़काव होना बहुत ज़रूरी है। अपने बहुत से भैया बहन ऐसे होते हैं अपने घर में तो खूब साफ सफाई रखते हैं, खुद भी खूब साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन भैया कई बार क्या कराते हैं कि आग बचा के अपने घर को कूड़ा कचरा सामने के घर के द्वारे या पड़ोसी के द्वारे डाल देते हैं, जो बहुत गलत आदत है। भैया अपन को चाहिए कि जब हमें स्वयं को सफाई पसंद है, स्वच्छता पसंद है, तो फिर हम वही बात दूसरे के लाने भी अपनाएं। ऐसे यदि हमें गंदगी से बीमारियां लग सकती हैं तो हमारे पड़ोसी को भी तो गंदगी से बीमारियां लग सकती हैं, और यदि हमारे पड़ोसी के यहाँ कोनो परेशानी है, कोनो तकलीफ है, कोनो संक्रामक बीमारी है तो वासे हम बच जाए हैं ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हम भी वासे प्रभावित हो सकते हैं, तो हमें जो बात को अच्छी तरह से समझत भाई, अपने स्वयं की स्वच्छता को ध्यान रखने हैं, आसपास के वातावरण की स्वच्छता को ध्यान रखने हैं और अपने घर में जो पशु हैं, जो भी हमारे रूढ़ जंगेरू हैं, उनके लाने भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। कैसे भैया गंदगी को प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ते हैं, वे भी बीमार पड़ सकते हैं, तो अपन को चाहिए कि अपन उनकी भी साफ सफाई और स्वच्छता को पूरा ध्यान रखें। वो कैसे भैया कि जहाँ अपन अपने पशु बांधते हैं वो जगह साफ सुथरी हो, अगर मावे ढालू वालो फर्श है तो ठीक है, अगर कहूँ वो समतल फर्श है वहाँ में गड्ढा हो जाते हैं तो फिर अपना पशु जब मलमूत्र करत है, पेशाब करत है, गोबर करत है तो वो वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और पशु अपने खुरन से

कुछ अरकें खूंद के जो है गंदगी पैदा कर देते हैं। फिर वही में अपने पशु बैठ जाते तो वो स्वयं भी गंदे हो जाते हैं। तो बासें जो है अपने पशुओं के लाने भी बहुत सारे जो घातक कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, पशुओं को भी बीमार कर सकते हैं। तो भैया जो बात को ध्यान रखते हैं कि जितनी ज़रूरी सफाई हमें अपने लाने हैं, स्वच्छता हमें जितनी ज़रूरी खुद के लाने हैं, उतनी ज़रूरी हमारे जानवरों के लाने भी है। और देखो जानवर निरीह प्राणी होते हैं जो अपनी परेशानी मुंह से बोल के हमें बता नहीं सकते। हमें खुद ही उनकी जो भी परेशानी है, उनकी जो भी तकलीफ है, वो हमें खुद समझने पड़े और बाकी हमें ही निराकरण खोजने पड़े। तो जैसे कोई गंदगी है तो हम माँ में पूरी तरह से साफ़ सफाई बनाए रखें, हवा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, अपने पशुओं के लाने अच्छी स्वच्छ हवा पहुँचे। और यदि कहीं सर्दियों में है ना, जैसे तो अपन ध्यान रखते हैं कि अपने पशु को ठंडी हवा ना लगे, वैसे ही अपन को गर्मियों में ध्यान रखना है कि अपने पशु को हवा भी पर्याप्त रूप से लगे। और बरसात से अपन कहूँ देखें कहीं जो है अपने सार की छत वत टपक तो नहीं रही है, कहूँ से पानी तो नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें देखो और उनको ध्यान रखो बहुत ज़रूरी है। कैसे भैया जितना अपन स्वच्छता से अपना स्वास्थ्य प्रभावित होते ठीक, उतना ही स्वास्थ्य अपने पशुओं को भी प्रभावित होते। हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को ध्यान रखो और हम सोच रहे चर्चा आगे जारी रखें। बात से पहले सुनने का जरूरी संदेश।

0: वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: भैया अपन संदेश सुनो और अब चर्चा कर लेते हैं तना कछु जल संवर्धन के बारे में। जल संवर्धन या खेती किसानी में जल संरक्षण जाकी कछु प्रमुख आधुनिक विधियां जो है वो हमें बहुत लाभदायक हैं हमारे लाने, हमारी खेती के लाने। मुख्य रूप से जैसे बात करें ड्रिप सिंचाई की और स्मार्ट स्प्रिंकलर प्रणाली की, जे जामे दोनों ही विधियाँ जामे शामिल होती हैं और जिनके माध्यम से पानी जो है वो सीधे सीधे

परिवर्तन के लाने भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कायसे की जो सीधे प्रत्येक पौधा की जड़ तक पहुँचा थे और जावे पहुँचावे को जो कारगर तरीका वो है, वो जाके द्वारा बाष्पीकरण द्वारा पानी की बर्बादी पर रोक सुई लगाते हैं और लगभग 60% तक पानी की जासे बचत हो जाते हैं। यानी कम पानी में भी अपन अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। अपन देख रहे हैं दिनों दिन पानी को स्तर नीचे जा रहा है और पानी को संकट खड़ो हो जाते हैं गर्मियन में आके। तो किसानन के लाने ऐसी जो पद्धति ईजाद करी गई है, सो आविष्कार करो है कि अपने किसान भैया जो हैं जब विधि से सिंचाई करके पानी की बचत कर सकते हैं और खेती में अच्छी तरह से पानी लग जाए, वो भी उनके लाने उनको काम पूरा हो जाते हैं। स्प्रिंकलर विधि द्वारा बारिश के तरह जो पानी है वो छिड़काव करते हैं और जा विधि असमतल भूमि और रेतीली मिट्टी के लाने बहुत उपयोगी है। तो भैया देखो जो तो वही बात कि अपन कैसे आधुनिक सिंचाई की विधियाँ अपना के जल संवर्धन करें। और अब हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को ध्यान रखोगे खेती किसानी में। जय के संगे घड़ी हमें इशारा कर रही है कि मैं आपसे विदा ले लें। मैं तो सभी भैया बहनों को जमुना बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में।
3: जय जवान जय किसान।
4: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन का जय जमुना बहन की राम राम
3: और संगी मंगरू भैया की सोई राम राम।
4: राम राम मंगरू भैया, और सुनाओ खेती किसानी कैसी चल रही है?
3: बस बहन देखो अपनी खेती किसानी में अपन देख रहे हैं कि इस समय जो है खरीफ फसल को समय चल रहा है, तो अपने किसान भैया जो है खरीफ फसल में लगे हुए हैं।
4: बिल्कुल।
3: और जामा देखो ऐसा है खरीफ फसल में भी कि अपना जो है पानी को इंतजार है कि पानी कहूँ बरसे।
4: हाँ।
3: अब कहूँ तनक मनक पानी बरस गया है, उनमें भाई किसान भैया ने बोनी कर दी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये सब की बोनी कर दी है। लेकिन अब कहा है कि बीच में जो है भाई पानी को तंगा लग गया। अब जहाँ कहा है जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, जा तो तनक दिना तक झील सकते हैं 15-20 दिना कम से कम। अब बाकी के जो फसलें हैं उनके लाने कहा है कि पानी की ज़रूरत है।
4: बिल्कुल
3: है ना। अब पानी अगर नहीं पड़ेगा तो बाँ में फिर अपने लाने जो है फसल जो है भाई जावे की संभावना पूरी पूरी लगेगी। और कछु भैया ऐसे हैं कि जिनने भाई खेत में बोनी नहीं करी, कैसे उनके होते बोनी लाग पानी नहीं पारो, तो वह अपने बीज खाद तैयार लेके बैठे हैं कि जैसे पानी पर जाए अच्छो तो उसके बाद जो है बोनी कर दें।
4: बिल्कुल सही भैया,
3: है ना। तो अब जा समय में किसान भैया की जो स्थिति बन गई है, अब अपने किसान भैया के लाने खेती तो कर रहे, लेकिन अपने किसान भैया के लाने जो बहुत जरूरी है ऐसे समय को देखा तो भाई कि अपन खेती के संगे संगे कोई सहायक धंधा जरूर करें।
4: बिल्कुल सही कही भैया आपने कि खेती अकेले करवे से अपने अब जे समझ लो कि बाहर नहीं पड़ने।
3: हाँ।
4: अपन को संग में कोनो ऐसो व्यवसाय संग में करने हैं
3: जिससे अपने जो है आमदनी।
4: हाँ।
3: होत रहे।
4: हाँ।
3: है ना जी। मैं अपन नुकसान अगर फसल से होगा तो दूसरी जगह पूर्ति होत रहे।
4: बिल्कुल,
3: तो जैसे अपन बात करें खेती से जुड़े भाई।

0: व्यवसाय में तो सबसे मुख्यात है पशुपालन।
1: हाँ भैया,
0: तो पशुपालन
1: पशुपालन
0: अपने किसान भैया के लाने जो है बिला लाभकारी व्यवसाय है और
1: बिल्कुल।
0: जो खेती से जुड़ा भाव व्यवसाय है तो
1: हाँ
0: जे
1: भैया
0: किसान भैया के लाने जरूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया,
0: अब
1: सही
0: जहाँ
1: कह रहे
0: कहो तो
1: हैं।
0: देखो खेती से पशुअन के लाने मिलत
1: हाँ
0: और पशुअन से खेती के लाने
1: खेती
0: मिलत,
1: एक दूसरे के
0: आप
1: पूरक है,
0: पूरक
1: मैंने
0: हैं।
1: समझ
0: अब
1: लो।
0: जहाँ कहा है कि अपने लाने अतिरिक्त अपने कोई काम ऐसा नहीं करने हैं जिमें जो है अपने ज़्यादा परेशानी आ, खेती अपन कर रहे, खेत पे अपन रह रहे, तो ये चार पशु पाल लो बड़े या
1: बिल्कुल
0: दूध देवे बारे।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बात से कहो ये कि दूध ऐसे जो है अपने लाने हैं रोज की 1,500 रुपये मिलत रहेंगे, अब घर को खर्चा चलत रहेगा, खेती से भाई अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी।
1: बिल्कुल भैया। और जैसे कि पशु को धन कही गई, पशुधन है
0: हाँ
1: ना,
0: जैसे अपन पशुधन
1: और
0: कहते हैं।
1: जैसे एक शासन जो योजना चला रही है राष्ट्रीय पशुधन मिशन
0: आओ
1: है ना, और जाको प्रमुख रूप से उद्देश्य जो ही है कि विशेष रूप से जहाँ जो मुर्गी पालन पे ज़्यादा विशेष जोर दिया हुआ है कि जो अपनी उद्यमता विकास या नस्ल सुधार या जो चारे की उपलब्धता को बढ़ावा उत्पाए, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करवो और किसान भैया बहन की आय में बढ़ोतरी करवो, जाको प्रमुख उद्देश्य है। और भैया जो छोटे पशु जैसे भेड़ है, बकरी है, सुअर है, मुर्गी है, इन सबके पालन के संगे संगे चारा उत्पादन से जुड़े भाई जो उद्यम है, उद्योग है, उनको भी बढ़ावा दवा है जय योजना के माध्यम से। और भैया बेहतर नस्लों के विकास और आनुवंशिक सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता जैसे मांस, अंडे, दूध, ऊन, इनमें वृद्धि कर वो भी जाको प्रमुख उद्देश्य है। तो भैया बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, और अपने जो भैया जिस सब पशुओं को पालन कर रहे हैं वे जय योजना से अवश्य लाभ लें, है ना। प्रमाणित चारा बीज की श्रृंखला को मजबूत कर वो, चारे की कमी को पूरा करवे के लाने जो है योजना में बहुत सारे ऐसे बिंदु दिए गए हैं जिनके माध्यम से अपने किसान भैया पशुपालन अगर कर रहे हैं तो वे काफी हद तक लाभान्वित तो हो सकते हैं।
0: तो बहन देखो ये तो आपने बताया ये तो कर ही सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: भैया
0: अपन जो सामान्य तौर पे जैसे बात करें जहाँ मैं कहा है कि ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, पूछताछ की जरूरत
1: बिल्कुल
0: पड़ेगी, लेकिन अपन
1: बिल्कुल
0: जो
1: पड़ेगा।
0: अपने गाय भैंस अपन जो अगर पाल रहे हैं तो
1: हाँ
0: ऊखो पर किसान भैया का है परम्परागत है अच्छे से अपन ऊखों कर भी सकते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ऊखों करवे से अपने लाने डबल फायदा है ना, कि पशुअन से अपन जैसे पशु पाल रहे तो नगद मिल रहा हो, दूध खावे पीवे के लाने मिल रहा हो,
1: बिल्कुल
0: और पशुअन से सबसे अच्छी बात जो है खेती के लाने अपने लाने जो है गोबर की खाद जो अपने लाने
1: हाँ,
0: मिल रही है
1: वो बहुत महत्वपूर्ण
0: वो
1: चीज है
0: बहुत ही
1: भैया,
0: महत्वपूर्ण चीज़ है। अपन
1: सही
0: देख
1: है।
0: रहे हैं कि रासायनिक खाद उर्वरकन को उपयोग कर करके अपन जो है अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति है वो लगातार घटत चली जा रही है ना, और बाकी पैदावार भी घट रही है, लागत बढ़ रही है, जबकि अपना उद्देश्य का है कम लागत में अधिक
1: अधिक
0: पैदावार,
1: उत्पादन,
0: है
1: बिल्कुल सही
0: ना।
1: कह
0: तो
1: रही
0: जब
1: हैं।
0: अपन कब आ सकते हैं जब अपने जो है लागत घटे और पैदावार जा, तो गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जिसमें जो है भाई किसान भैया जो है खेत में अगर एक बार डाल दें तो वह 3 साल में जो है बढ़िया उत्पादन देते
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: भैया
0: जो रासायनिक खाद वगैरह नहीं देते और पौष्टिक रहते हैं, स्वास्थ्य के लाने लाभदायक रहते हैं और भावी को जो है पहलाने मिला तो अच्छा मिलत है।
1: बहुत बढ़िया मिला था,
0: तो
1: सही कह
0: कहने को
1: रहे
0: मतलब
1: हैं।
0: जो है कि अपन को ऐसे व्यवसाय करने हैं जिसमें अपने आमदनी बनी रहे और विशेष कोई मेहनत नहीं है, अपने चार
1: हाँ
0: पशु अच्छे दूध वाले पाल लो,
1: बिल्कुल
0: चालीस चालीस
1: भैया
0: नहीं पालने हैं अपने, चार
1: बिल्कुल
0: बढ़िया दूध
1: बिल्कुल
0: वाले पाल लो, बस जो है पैसा वही काम चलत रहे। वो अपन क्यों कह रहे कि जैसा हमें स्थिति अपन देख रहे हैं खेती की डमाडोल चल रही है,
1: बिल्कुल
0: अगर पानी
1: भैया
0: नहीं पड़ो तो किसान भाई इनके लाने जा खरीफ की फसल में तो नुकसान
1: बिल्कुल है, सही कह
0: है
1: रहे
0: ना।
1: हैं।
0: तो कम से कम जा है कि जी की भरपाई अपन जो है इस समय में कर सकते हैं, तो किसान भाई इनके लाने ऐसे व्यवसाय छोटे छोटे करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है भैया, और इन सहायक व्यवसाय के माध्यम से भी अपने जो न आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी अपनी मजबूत बना
0: हाँ
1: सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो अब देखो भैया, जय के संग में एक चीज और आउट है, वो है मधुमक्खी पालन। अपन जैसे पशुपालन की बात कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन भी अपना किसान
0: जब भी
1: भैया
0: खेती
1: खेत पे
0: से
1: ही कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना। खेत में इतना कहूँ जगह है वहीं में मधुमक्खी पाल के, और वासे जो है अपन देखो खेतन में जो फूल होते हैं फसलन पे उनसे ही वो वहाँ से वो लेके आती
0: पराग
1: हैं,
0: ले लेते
1: पराग
0: हैं,
1: लेके
0: पराग
1: आती
0: लेकर
1: हैं और
0: जो है
1: फिर वहाँ शहद को निर्माण करती हैं, तो वहाँ से शहद की प्राप्ति होते हैं, मोम की प्राप्ति होते है ना। तो मधुमक्खी पालन भी एक बहुत लाभकारी व्यवसाय है, अपने किसान भैया चाहें तो वे एक सहायक व्यवसाय के रूप में खेत पे ही वे कछु मतलब जो मधुमक्खी के जो पेटियां
0: बॉक्स
1: होती
0: बॉक्स
1: हैं,
0: होते
1: बॉक्स
0: हैं
1: होते
0: हाँ का
1: हैं,
0: जो
1: उनके
0: है
1: माध्यम
0: रख
1: से
0: सकते हैं।
1: मधुमक्खी पालन कर सकते हैं।
0: लेकिन मामा कहा है कि अपन देखो समय अब तो खरीफ को है, लेकिन खरीफ के बाद जो खरीफ में जो किसान भैया खेत खाली छोड़ देंगे उसके बाद भी करेंगे वहाँ में सरसों की फसल,
1: हाँ
0: और
1: भैया
0: सरसों की फसल जब करेंगे उसमें जो फूल आए
1: हाँ
0: वो जो है मधुमक्खी पालन को सबसे उपयुक्त तो समय
1: उपयुक्त
0: रहे
1: समय
0: थे।
1: है, सही बात है
0: तो बाम
1: भैया।
0: में कहा है कि ज़्यादा पराग होते हैं, समय
1: हाँ
0: भी अच्छो रहते हैं, है ना, गुलाबी सर्दी सी आ जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: बाम में मधुमक्खी जो है अच्छे से जो है शहद को उत्पादन करके अपने
1: अच्छा
0: किसान भैयान के लाना जो है लाभ,

0: दे सकते हैं,
1: बिल्कुल भैया,
0: है ना।
1: तो जैसे
0: लेकिन
1: वैसे
0: अवैसे
1: बता रहे
0: अपन
1: हैं।
0: जो है
1: हाँ
0: इसको
1: हाँ
0: समझ लें, देख
1: बिल्कुल
0: लें और प्रयास कर लें कि अपने यहाँ करत कैसे हैं, कम से कम
1: कैसे।
0: अनुभव तो ले लें, कम से कम जान तो लें कि अपने कैसे होने हैं। जी वजह से अपन बता रहे हैं कि इस समय में ये अपन सब चीज़ें जान लो,
1: बिल्कुल
0: आगे आगे
1: भैया,
0: वाले समय अपन ये काम को जो है कर सकत
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं। और अगर योजनाबद्ध तरीके से कोनो काम कराते हैं तो वहां में अपन को निश्चित सफलता मिलता है।
0: बिल्कुल सही कह
1: तो
0: रही
1: ये
0: मैडम,
1: पहले से योजना बना लें, जगह को चुनाव कर लें, पूरी जानकारी समझ लें, और बाकी बात जैसी सही समय
0: समय
1: आए
0: आओ समय वही के
1: वो
0: शुरुआत कर रहे हैं तो
1: बिल्कुल
0: बात से
1: भैया।
0: कहेगा पहला मिला बिला तलाब हो सकत है।
1: और भैया अब अपन अपनी चर्चा को नेक विराम दिए, तो मैं अपने क्रम की तरफ चलें भैया,
0: आओ
1: इंतजार कर रहे होंगे। तो आज जो अपनो क्रम है किसान बाणी गांव में किसानों के साथ, जामे आज हम आपको सुनवा रहे हैं ग्राम बमरा विकासखंड पोहरी जिला शिवपुरी की स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जो कार्यक्रम, जाके प्रस्तुत करता है श्री विनोद कुमार त्रिपाठी और सानी सहयोग है भैया मोहन सिंह यादव को। तो अपन सब सुनाते हैं जो स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित
0: जी
1: कार्यक्रम।
0: कार्यक्रम।

0: एक जगह के किसान के अनुभव लेकर नहीं, दूसरा किसान भैया जो है सीखे। और आजकल अपन देख रहे हैं कि आधुनिक खेती हो गई है, नए नए कृषि यंत्रण को उपयोग हो रहा है, नए बीजन को उपयोग हो रहा है, और जो सवाई का उपयोग किसान भैया कर रहे हैं और आगे उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। सो किसान भैया, आज अपन आ गए हैं शिवपुरी जिले के विकास खंड पोहरी के ग्राम बमरा में, और बमरा में पे बिलात किसान भैया बैठे हुए हैं। तो अपन इन किसान भैया से तनक देर से बताएंगे, इसे पहले सगे किसान भैया से कहे थे राम राम।
1: राम राम।
0: सो किसान भैया, देखो भाई बीच में जो किसान भैया हैं, तो अपन सबसे पहले जाना था इनको नाम, तो भैया आप सबसे पहला नाम बताओ।
2: मेरा नाम है सर वीरेंद्र परिहार।
0: वीरेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी हो गई?
2: मेरी है 36।
0: 30 साल अपनी उम्र हो गई। और अपन अगर बात करें खेती की जमीन की, तो खेती की जमीन अपने पास कितनी?
2: अपने पास जमीन है सर 42-43 बीघा।
0: 42-43 बीघा अपने पास जमीन है। और अपन बात करें सिंचाई के साधन की, तो अपने पास सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं?
2: ट्यूबवेल है।
0: तो बात यह पाई जो है 42-43 बीघा में जो है पूरी पड़ जाते
2: जी।
0: और अगर अपन बात करें अपने पढ़ाई लिखाई की, तो अपन तनक पढ़े लिखे भी हैं।
2: 8 बजे तक हूँ सर।
0: तो अपन ने पढ़ाई लिखाई आगे ना करा, तो भाई अपन खेती किसानी के काम से अपन कैसे जुड़े?
2: सर खेती किसानी से इसलिए जुड़े थे कि माँ बाप करते थे पहले खेती है, तो स्कूल ऐसा थोड़ा ज्यादा ऐसा है हमारे गांव में है नहीं, तो उस चक्कर में हमने खेती किसानी पे ज्यादातर रुचि ली।
0: मतलब अपने 8वीं पास करवे के बाद में फिर अपन ने बाहर पढ़वे जाने हैं, तो माँ बाप ने पढ़वे के लाने अपन जा नहीं सकते, तो अपन ने खेती किसानी से ही जुड़ गए
2: सर,
0: है ना। तो अपन 36 साल की उम्र हुई, तो लगभग अपन क्या साल से अपन खेती कर रहे?
2: मैं कम से कम चल रहा हूँ 12-13 साल से खेती कर रहा हूँ सर।
0: अगर अपन बात करें 12-13 साल पहले की
2: जी,
0: तो जब आपने खेती शुरू करी है थी, तो बस समय खेती की स्थिति कैसी है थी, कौन कौन से कृषि यंत्र रहते और पानी के सिंचाई के साधन का है थे और कैसे खेती होता थी?
2: पहले तो पानी के सिंचाई के साधन भी नहीं थे, पहले तो बैल थे, हर बैल उनसे खेती करते थे। इसके बाद में अब साधन हो गए हैं, मशीनें हो गई हैं, ट्रैक्टर हैं, हैरो है, कल्टी सीड ड्रिल, जैसे उनसे उराई बुवाई होती है।
0: तो पहले जो उन खेती होती, मतलब जैसे हर बैल से खेती कराते, तो बाद में जो है खेतन की जुताई कितने हो पाती और कैसे कर पाती?
2: उसमें तो सर दिन भर में 1.5 बीघा ज़्यादा 2 बीघा पाती थी पूरे दिन में। और अब तो साधन चल गए हैं, तो अब तो एक दिन में भी आप 20-30 बीघा जितने भी आँख सको नहीं आँख सकते हो।
0: और पहले अगर अपन बात करें सिंचाई के साधन की, तो सिंचाई के साधन क्या है थे पहले?
2: साधन सर पहले कुछ नहीं थे, पहले तो सूखी जमीन करते थे बस एक ही फसल।
0: अच्छा, जोन के पास जैसे कुआ होते तो उनमें
2: रेंट चलाते थे सर।
0: गाँव में भी जो है सिंचाई ज्यादा नहीं हो पाती,
2: बिल्कुल कम 5-7 बीघा में।
0: तो और अपन ने बात करें खेती, कौन कौन सी खेती होती है बाद समय में
2: सर? गेहूं होते थे, कटिया गेहूँ बोलते हैं, बूरी पिछी है, और जो सोयाबीन तो चलते नहीं, बाजरा, मक्का, ज्वार, जे ऐसी चीज उड़ती है, जे रार है, ऐसी खेती होती थी पहले।
0: पहले जो उन खेती होती जैसे मक्का है, ज्वार है, रहार है, आप जो बता रहे हो, और कटिया गेहूँ है, तो जा स्वास्थ्य के लाने कैसे आती जी बताओ?
2: जी स्वास्थ्य के लिए नंबर 1 थे सर, अब तो खैर कम वो हो गई है इनकी कैपेसिटी।
0: तो पहले गेहूँ की खेती कम होती?
2: पहले गेहूँ की खेती कम
0: नहीं होती ना?
2: नहीं, बहुत कम होती थी
0: है ना। पिसी तो जब मिलती, जब कोई गांव में मेहमान आ जाते,
2: जब बहुत कम होती थी सर,
0: है ना। तो जाको कारण का है, तो अपने खेती किसानी के साधन नहीं है थे अपने पास, कृषि यंत्र नहीं है थे, जो कारण है। तो लेकिन आज अपन देख रहे कि खेती के सभी साधन हो गए हैं, और खेती अपन जो आपके पास भी कृषि यंत्र कौन कौन से हैं?
2: ट्रैक्टर है, मशीन है, हैरो है, कल्टी है।
0: तो आज जो अपन खेती कर रहे हैं वो आधुनिक खेती हो गई है, हाइब्रिड बीज आ गए हैं, अच्छी पैदावार हो रही है?
2: पैदावार तो अच्छी ठीक ठाक हो रही है सर, लेकिन आजकल दवाइन का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया ना, बगैर दवाइन के बगैर खेती होती नहीं है।
0: रासायनिक खाद और बर्कन का उपयोग किसान भैया ज्यादा कर रहा है,
2: बिल्कुल।
0: तो जैसे कहा है लागत बढ़ी है,
2: लागत बढ़ी है।
0: और दूसरा नुकसान जैसे कहा हो,
2: जैसे नुकसान दूसरा जो है कि खेती में देखो दवाइयां अपन ज्यादातर उपचार करते हैं ना, तो वे असंभव करके नुकसान नहीं पहुंचाते हैं,
0: जैसे पर्यावरण भी दूषित होते हैं।
2: हाँ।
0: खेत भी जो है उर्वरा शक्ति खेतर की भी कम हो जा रही है। और स्वास्थ्य के लाने का लाभदायक है जी?
2: नहीं, फायदा नहीं है सर, लाभदायक
0: के लाने भी लाभदायक नहीं है,
2: नहीं हानिकारक है।
0: हानिकारक है ना, लागत भी ज्यादा हो रही, पैदावार कम मिल रही, भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही। तो जामे अच्छी खेती हो उके लाने अपने कौन सी तरफ, अपन गेहूँ जैसे गोबर को खाद है, तो गोबर खाद अच्छो है कि रासायनिक खाद अच्छो है?
2: सर वैसे तो गोबर का खाद से तो कोई सा भी खाद नहीं लगता है, सब खाद फैल रासायनिक, केवल रासायनिक में चमक दमक रहती है, ताकत वो आप बेदर ताकत देती हो तो अपने लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ज्यादा हो रहा है। और एक बार डाल दिया अपना रासायनिक खाद, दोबारा आ दिया, अपने पास पैसे की कमी आ गई किसान के पास, किसी के पास नहीं हो पा रही व्यवस्था, वो नहीं डाल पाया, तो उसकी खेती बहुत कमजोर हो जाती है।
0: मतलब आप फिर लगातार भाई डालने हैं ना, और जैसे गोबर की खाद को अपन उपयोग करें और रासायनिक खाद को उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे जो है अपन अगर बात करें नुकसान की, तो नुकसान दोनों में से कौन सी नुकसान है?
2: फसलन से रासायनिक खाद वाले से अधिक नुकसान तो नहीं है खैर, लेकिन नुकसान फिर भी है, दवाई भी तो डलती है सर इनके साथों में, लेकिन इस टाइम पर खेती में किसानों के लिए सोयाबीन में, टमाटरों में दवाई डल चुकी हैं। और अभी कोई रिजल्ट नहीं है।
0: शरीर के अंदर जाएंगे तो बिला तरह की बीमारी पैदा होगी।
2: बिल्कुल होंगी सर,
0: है ना,
2: बिल्कुल
0: तो नुकसानदायक है। अच्छा, गोबर की खाद अपन एक बार खेत में डाल दें, कितने समय तक काम करते हैं?
2: 3 साल तक सर।
0: 3 साल में काम कर रहे थे, वो बाकी से पैदावार कैसी मिलाते हैं?
2: बहुत तगड़ी
0: और स्वास्थ्य के लिए आने
2: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा। तो आप एक किसान भैया जो है रासायनिक खाद उर्वरक का उपयोग क्यों कर रहे हैं, गोबर की खाद का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?
2: गोबर की खाद किस लिए नहीं किया सर, पशुपालन बहुत कम रह गया ना लोग बागों के पास।
0: लेकिन अपन खेती कर रहे हैं, खेती के संग पशुपालन तो करना चाहिए किसान भैया के लाने।
2: पशुपालन तो कर रहे हैं, अब जैसे मेरे पास जो पशु हैं 7-8 भैंसे हैं, गोबर की खाद मेरे पास पर्याप्त हुई है।
0: लेकिन खेती के संग आप पशु पाल रहे हो?
2: बिल्कुल।
0: तो आपके पास कितने पशु हैं?
2: पशु हैं सर मेरे पास 13
0: पशु हैं। तो उनकी अपन ने रहवे सहवे की कैसी का व्यवस्था कर रखी
2: है? सर हाल फाल तो व्यवस्था तो ऐसी छोरे में बंदी रहती है, फिर सर्दियों में बरसात में टपड़ियां बना लेते हैं उसमें रख देते हैं।
0: तो और जैसे अपन जो दूधारू पशु हैं अपने पास, तो दूध को उत्पादन आपको कितने हो जाता है बिन से?
2: बिन से दूध का उत्पादन तो सर हमारे घर खर्चा लाग बहुत पर्याप्त हो जाता है, बाजार तो अभी बेचा नहीं है खैर।
0: तो जब भी अच्छी बात है कि अपने कम से कम घर को शुद्ध दूध मिल रहा हो पहला ने, और दूसरी चीज का है कि उसे अगर अपने पास ज्यादा है तो बेच के किसान भैया अतिरिक्त आमदनी भी ले सकते हैं।
2: बिल्कुल ले सकते हैं।
0: और सबसे अच्छा फायदा जो है कि अपने लाने पर खेती अपन कर रहे हैं तो गोबर को खाद पहला ने मिल जाता है।
2: बिल्कुल मिलता है।
0: बाको भी अपन उपयोग कर सकते हैं, ईंधन के रूप में भी अपन उपयोग कर सकते हैं।
2: बिल्कुल कर सकते हैं।
0: तो खेती और पशुपालन एक दूसरे से जुड़ा हुआ व्यवसाय है।
2: बिल्कुल,
0: है ना,
2: बिल्कुल।
0: खेती से पशुअन के लाने मिलाते हैं और पशुअन से खेती के लाने
2: मिलता है सर।
0: तो अपने किसान भैया ने ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए।
2: बिल्कुल करना चाहिए सर।
0: कैसे कि अपन देख रहे हैं रासायनिक खाद उर्वरकन को उपयोग कर करके अपन भूमि की उर्वरक शक्ति घट जाएगी,
2: घट जाती है।
0: और एक समय ऐसा आगो के जी में जो हो उत्पादन चाहे कितने कहीं खाद डाली उत्पादन
2: नहीं होगा सर,
0: क्यों भूमि कर नहीं पड़ जाएगी, पैदावार नहीं देगी।
2: बिल्कुल सही।
0: तो फिर बस समय में अपन जी को उपयोग करेंगे तो फिर धीरे धीरे बस समय आगो जब जाके अपन गोबर की खाद उपयोग करेंगे तो वहां में बिलास समय लगेगा,
2: बहुत लगेगा।
0: तो अब ऐसे अपन अगर गोबर की खाद को किसान भैया कम कम जमीन में जैसे अपने पास 20 बीघा है, तो तेरी 5 बीघा में डाल दे, अगली बार 5 में डाल दे, फिर अगली बार 5 में डाल दे, तो धीरे धीरे भूमि की उर्वरक शक्ति में सुधार होगा।
2: बिल्कुल होगा सर।
0: अच्छी पैदावार होगी,
2: अच्छी पैदावार,
0: लागत भी कम लगेगी,
2: लागत कम लगेगी,
0: है ना, और स्वास्थ्य के लाने भी
2: बहुत अच्छा रहेगा सर।
0: तो किसान भैया के लाने आप क्या कहना चाहोगे जिस संबंध में?
2: जिस संबंध में सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देसी खाद गोबर की खाद अधिक तरह खेतियों में डालें, उससे किसान भाइयों के लिए सब तरह से फायदा रहेगा, लाभदायक रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, पैदावार में भी लाभदायक है, पशु पालन अच्छा है, करना चाहिए वैसे तो।
0: तो वीरेन जी आपने भाई किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, कराने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया देखो अपने पास एक किसान भैया और हैं, तो अपन चला था उनके पास, उनसे जाना था, उनको नाम तो ही आप नाम बताओ।
1: मेरा नाम रामलाल जाट।
0: भाई उम्र की अगर अपन बात करें तो भाई उम्र कितनी है?
1: उम्र 50 साल।
0: 50 साल की अभी उम्र हो गई। और अगर अपन बात करें खेती किसानी की तो अपन क्या साल से खेती कर रहे हैं?
1: 10-12 साल से खेती कर रहे हैं।
0: 10-12 साल से खेती कर रहे हैं। और अपन अगर बात करें आज के समय की खरीफ फसल की, तो जा समय में अपन ने जो है भाई खेतन में कौन कौन सी फसल लगा रखी है?
1: इस समय फली भी है और सोयाबीन है, ऐसी फसलें मान लो
0: मूंगफली है,
1: मूंगफली है, मक्का है, ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी खेती।
0: अच्छा जब बताओ अपन ने ये 4-5 तरह की फसल के लिए क्यों करी है? अपन ने ये कहीं का नहीं करी है, सोयाबीन करने है सोयाबीन करते, मक्का करने है मक्का करते, फरी करने तो फरी करते, जब अपन ने 4-5 तरह की फसल काय लगाई?
1: सर उससे क्या है कि एक फसल नहीं होती दूसरी तो हो जाती है, इसलिए कुछ फायदा भी मिल जाता है। सोयाबीन है बरसा नहीं भाई तो सोयाबीन नहीं होगा, कुछ फरी थोड़ी बहुत निकल जाएंगी क्योंकि पहले बबाई हो जाती उनकी।
0: तो जा किसान भैया देखो इन्हें कितने अच्छी बात बताई कि अपने पास अगर अपन 4-5 तरह की फसल बो दें तो वहाँ में कहा है कि एक फसल में अगर नुकसान ही हो जाए तो दूसरी से पाई जो है भरपाई हो जाता है, कहवे को मतलब जो है कि नुकसान नहीं मानेंगे लेकिन अपन को कहा है कि बराबर में रहेंगे, फायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान भी नहीं होगा। तो जो किसान भैया इनके लाने करना चाहिए, अब अपन बात करें फरी की तो

0: फरी की अपन ने तैयारी, फरी अपन ने जो है कौन सी करी है?
1: वो झुनका फरी बोलते हैं उसे, वो छोटी वाली होती है ना।
0: अच्छा, झुनका फरी जो पटावे वाली है ना। तो बाकी अपन ने तैयारी कैसे करी ये बताओ शुरू से।
1: सर वो पहले मान लो बकर चलवा देते हैं, बकर के बाद कल्टी फरवा दे, कल्टी के बाद फिर सीडलेस छोड़ देते हैं उनको।
0: तो जाके लाने अपन बीज कहाँ से लेके आए?
1: बीज तो सर घर का ही था,
0: घर को बीज है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। ज्यादातर किसान भैया क्या करते हैं कि बाजार से बीज लेके आते हैं, और बाजार को बीज का होता है कि मशीन को फूटो रहते हैं, तो मशीन के फूटे से बताओ का नुकसान होता
1: है? वो सीड़ा होता है, ज्यादा तो उग नहीं पाया, बस डेली हो जाती है उसमें।
0: हाँ, तो दानों चटक जाते
1: हैं, चटक जाते हैं, वो बने लाख मान लो बाप वो नहीं बन पाता। आप
0: माने बन बो देंगे तो वहाँ में सूखे को
1: नहीं उगेगा, नहीं सलाद बन जाएगी बाद में, भाई में ही गल जाओ दाना।
0: तो किसान भैया के लाने अगर बीज लेने हैं मूंगफली को, तो फरी ले लें अपने घर को फोर कर तैयार करें।
1: हाँ वो सही है, सबसे बढ़िया
0: है ना। तो बाद जो है पूरा अपन 100 दाने डालेंगे तो 100 ही हुएंगे।
1: हाँ 100 ही हुएंगे, उसमें तो जान लो के बहुत जान लो 10-15 ही में, कम से कम नहीं तो 10 किलो 15 किलो खराब हो जाएंगे,
0: निकल जाते हैं। तो जैसे अपन बीज अपने तैयार कर लो घर को, उसके बाद अपन जब खेत में डाल रहे थे तो वहाँ को अपन कछु दवा लगाते हैं, बीज उपचार करते हैं कैसे, अपन खेत में डाल दिए?
1: दवा तो वैसे नहीं लगाई मैंने आज तक, लेकिन वो तो बढ़िया उगते हैं।
0: तो वहाँ में अपा रोग कीट कछु आते हैं उनमें?
1: नहीं आओ वैसे
0: नहीं आए। तो अपन अपन बात कर रहे हैं बीज की मात्रा की, तो एक बीघा में अपन बीज की मात्रा कितने लेते हैं?
1: 20 किलो
0: 20 किलो। और अपाओ जो बोवी को तरीका रहते हैं, तो बोनी को तरीका क्या रहता है, अपन कौन तरीका से बोनी कराते हैं?
1: सर उसे सीडल में डाल के उड़ देते हैं,
0: सीडल में। तो वहाँ में खाद भी मिलाते हैं कि अगर बीज डाल रहे हैं?
1: खाद पहले फेंक देते हैं।
0: अच्छा, खाद पहले फेंक देते हैं और बीज पीछे डाल देते हैं सीडल से। तो सीडल से बोनी करवे से और छटकमा विधि से बोनी करवे से, जहाँ से दोनों में का अंतर है?
1: सर वो छटक विधि से जान लो के दाना ऊपर रह जाता है तो उग नहीं पाता है, और बास सीडल से जो क्या के पूरा गीले में जाता है दाना, सही तरीके से उगता है।
0: और जा भी हो सकता है कि अपन छटकमा से कर रहे हैं तो कहूँ 4 दाने पर जाए, कहूँ ये कई दानों न पड़े, घनों बिगड़ो भी हो जाते,
1: अंतर पत्ता बहुत
0: घनों बिगड़ो हो जाते, तो बास पैदावार नहीं हो,
1: पैदावार नहीं हो उसमें दाने कहीं कहीं कुछ उग ही नहीं पाते हैं, और दो अंतर पर जाते बहुत ज्यादा।
0: और सीडल से जैसे अपन ने बोनी करी है तो वहाँ में कहा है कि निश्चित गहराई में जाते हैं,
1: निश्चित गहराई में जाता
0: है, बीज से बीज की दूरी बराबर रहते हैं,
1: बराबर रहती है,
0: पौध से पौध की दूरी बराबर रहते हैं, ये रहते हैं। और जहाँ से अपन ने निंदाई गुड़ाई करने में सुविधा होता है?
1: हाँ होती है सर, निंदाई गुड़ाई में सुविधा होती है, दवाई डालने में सुविधा होती है, सब तो जान लो के अच्छा बीज वो बनता है अंकुरण उसका, जो मान लो
0: अंकुरण अच्छा हो जाता। अब जैसे अपन ने बोनी कर दी, अब बोनी करवे के बाद में ऐसी कौन सी बात है जो फरी में अपन ने देखना चाहिए, जो अपनी किसान भैया के लाने जरूरी है?
1: सर उसमें मच्छर वगैरह और वो वैसे कुकरा सा लग जाता है, वो उसको देखना चाहिए वैसे तो,
0: जब अंकुरण होता है उस समय।
1: हाँ
0: तो बामे अपन शुरुआत में जैसे मान के चलो कोई कोकरास लग गाओ या पत्ती खा गाओ, तो बाकी दाने फिर अपन क्या करने हैं?
1: दवाई डालना चाहिए, लेकिन अब वो कहा है जानकारी नहीं है कौन सी दवाई है, अब डाली तो नहीं है वैसे,
0: अपने में लगो नहीं है जी की वजह से, है ना। तो बामे अगर अपन बात करें लागत की, तो एक बीघा में अपनी लागत कितने लग गई होगी, जुताई की, बीज की, खाद की, सीडल से बुआई होगी, अपने सब में ला के भाई एक बीघा की लागत कितने लग गई होगी?
1: सर 1200 रुपया तो जान लो के खाई को जाते हैं मान लो,
0: हाओ,
1: और बीज मान लो 100 रुपये किलो करीब मिलता है,
0: तो 20 किलो बीज होगा, 2000 रुपया होगा,
1: और 1200 रुपये भी हुए, और सुपर कट डालना बस वहाँ में 2 कट्टे डाल दो,
0: 4000 रुपया का खर्चा आ जाता है ना। अब 3 क्विंटल ही मान लो अपन, तो अब बात करें अपन भाव की, ऊखो पटा गए जब अपन बेच पे जहाँ गीली, तो वहाँ भाव अपने कब मिलने की संभावना रहते?
1: गिली फरी जो 300 और वो तो भाव के ऊपर 3-4 भी चली जाती है, 4 और 2500 ऐसे मान लो,
0: हम तो कह रहे 3000 रुपये चली गई है ना, और अपन 9000 रुपया की हो गई, और लागत है भाई 4000, तो 5000 रुपया एक बीघा पे लाने मिल जाए,
1: फायदा भी हुआ, पशु का इशारा भी हो जाता है,
0: बाग बल्लर काम में आते
1: हैं, काम में चौपने के काम में आता है, बढ़िया।
0: अच्छा उससे पशु खा लेते हैं?
1: हाँ बढ़िया खाते हैं।
0: अच्छा जब बताओ आपने खेती के संग संग पशु पाले के नहीं पाले?
1: पशु मान लो अभी तो नहीं है, गईया वगैरह, लेकिन
0: तो पशु पालना चाहिए किसान भैया ने?
1: पालना चाहिए, उससे फायदा है पशु से,
0: खेती में फायदा है,
1: खेती में फायदा है, और खाती बनती है पशुओं से, तो धरती में डालते हैं, जमीन में डालने से उसे उसमें भी फायदा होता है।
0: अच्छा ये बताओ कि अपन रासायनिक खाद जो खेतन में डाल रहे हैं और गोबर की खाद है, तो दोनों में से कौन सी खाद अच्छी है, कौन सी खाद का उपयोग भाई किसान भैया कराने करना चाहिए?
1: सबसे मेन तो वैसे गोबर की खाद सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो 1 साल डालो 3-4 साल ही सुधता है, 3 साल की या 4 साल ही सुधता है, और जिसमें जो आलू हर साल ही जो आलू पर जिस डालना पड़ेगा DAP है, यूरिया है, तो वह शक्ति तो कम होता है, लेकिन जमीन की, लेकिन

0: पैदावार नहीं मिलती,
1: पैदावार कम मिल पाती है, और जी
0: गोबर की खाद से लगातार पैदावार मिलत रहे थे
1: पहले, हाँ सबसे लाभदायक है वैसे।
0: तो पहला ने जो है कह वो मतलब जो है कि गोबर की खाद को उपयोग करना चाहिए, और वैसे भी अपन देख रहे हैं कि जो है बिला तरह की बीमारी हो रही, रासायनिक खाद को खर्चा भी ज़्यादा होता है, लागत भी ज़्यादा आता है, जहाँ लागत भी नहीं है गोबर की,
1: लागत का है कि उसमें अपने पशु पाल हो रहे हैं, एक साल में जो मान लो कितने मान लो अपने पास जमीन है बाग हिसाब से एक बीघा पड़ जाए, दो बीघा पड़ जाए, डालते रहो हर साल,
0: तो हर साल अपन जैसे करेंगे तो पूरे में हो जाएगी। तो जैसे कहा भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, अच्छी पैदावार होगी, और जो अपन लाने उपयोग करना चाहिए, तो अपन जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये पैदावार करत के उपाय खेती करत के नहीं करत।
1: अब मक्का वगैरह ज्वार वगैरह तो सर होती नहीं है बिल्कुल ही, और जब तो मक्का है जी फसलें होती हैं,
0: लेकिन स्वास्थ्य के लाने लाभदायक तो ये सब चीज़ है
1: स्वास्थ्य के लिए।
0: गेहूं तो नुकसान करत ना, के गेहूं तो आदमी जो खा रहा हो पीसी जो खा रहा हो है वो तो नुकसान कर रही, लेकिन ज्वार है बाजरा है ये अनाज को खावे में उपयोग करना चाहिए
1: सर, करना चाहिए, लेकिन अब वो कहा कि एक लोग कर ले तो क्या होता है सभी करें,
0: लेकिन धीरे
1: तो
0: धीरे जैसे अपन शुरुआत करेंगे भाई गाँव में चार लोग करेंगे अपने देख देख के सब करेंगे, ये भाव ही अच्छा है। अब जैसे गेहूं को भाव है बात देखो कम है, ज्वार देखो तो बिला ज्वार से दोगुने भाई जो है मतलब गेहूं से दोगुने ज्वार को भाव है,
1: वो इसलिए है कि आपको कर नहीं रहा इसलिए तो आपको महंगी
0: है नहीं
1: रहेगी।
0: तो पहले गेहूं को भाव ज़्यादा रहे तो ये ज्वार मक्का बाजरा इनको भाव कम रहे
1: तो ज्वार बाजरा पहले
0: होती ना
1: मेन फसल बोई होती,
0: लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती,
1: स्वास्थ्य के लिए लाभदायक।
0: तो भाई किसान भैया से आपका क्या वो चाहोगे कि मोटे अनाज की खेती उनको करना चाहिए?
1: हाँ सर मोटे अनाज की खेती करना चाहिए, उससे कहा है कि शरीर भी स्वस्थ रहता है,
0: भाव
1: भी अच्छा मिलता है, और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है।
0: तो भैया आपने भाई किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, कहलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया देखो भाई बमरा गांव से हो रही चलवे की बेरा, तो सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम।
2: राम राम।
0: किसान भैया अपन सुन रहे थे किसान माणी गांव में किसान के साथ क्रम के अंतर्गत ग्राम बमरा विकासखंड पोहरी जिला शिवपुरी के स्तर रिकॉर्डिंग पर आधारित जी कार्यक्रम, ये प्रस्तुत करता आदि भैया विनोद कुमार त्रिपाठी।
3: और भैया
0: तो बहन देखो भाई किसान भैया के लाने अपन जई के वो चाहेंगे कि देखो भाई जैसे खरीफ को समय चल रहा है,
3: बिल्कुल भैया,
0: तो खरीफ के समय में जो है अपने जई बातन को ध्यान रखने हैं कि अपने सब काम समय से करने हैं, है ना। अब जैसे वजन भैया की जैसे बोनी नहीं हो पाई है, बीज रखे बैठे हैं, खाद रखे बैठे हैं, तो उनके लाने अपने चाहिए कि वे पूरी तरह से जो है तैयार रहें, जैसे बारिश हो जाए खेत में जोत आ जाए उसके बाद जो है बोनी करने हैं, लेकिन बोनी करने के पहले जो बात ध्यान रखने हैं कि अपने बीज को बीज उपचार जरूर करने हैं, बिना बीज उपचार के कोई भी बीज अपन खेत में न डालें, उन्हें तो कहा हुई है कि अपन ने जैसे बीज अपन खेत में डाल दो और बागे बाद वहाँ में कोई फफूंद लग गई कोई कारण से उगो नहीं तो वहाँ में अपन जो है नुकसान हो सका था,
3: बिल्कुल हो सका था भैया।
0: तो अपने लाने जो भी अपने लाने विशेष ध्यान रखने, और दूसरी चीज चाहे कि अपन बीज की बोनी करें तो अपन सीड ड्रिल के माध्यम से ही बोनी करें, है ना, नहीं तो काउत के बरसात की फसल है,
3: हाँ।
0: किसान भैया क्या कराते हैं कि वो वासे जो है छिटकवा विधि से कर देते हैं, मैंने कहा छिड़क दो ऊपर से पटेला चढ़ा दो तो जी के बाद जो है सब हो जाए, तो ऐसो भी नहीं अपन लान नहीं करने है ना,
3: डबल पेटी
0: वाली जो सीडल होते हैं भाई साहब से करें या सिंगल भी है तो वहाँ में मिला के नहीं अपन वो नहीं कर सकते हैं, ज्यादातर किसान भैया कराते हैं, लेकिन वहाँ को फायदा तो अपने लाने जो दो पेटी की होते है ना भाई में ही अपने लाने ज्यादा फायदा मिला थे, तो अपने लाने की चाहिए कि अपन जो है ये काम को जरूर कर लें, है ना। तो किसान भैया सब करेंगे तो इसे कहा है कि उनकी पैदावार बिलात अच्छी होगी और भाई किसान भैया जो है लाभ अच्छे से ले सकते हैं। और देखो अब अपन भैया के लाना बताते हैं कल के मौसम की जानकारी।
3: हाँ, बिल्कुल भैया बताओ।
0: तो भैया देखो कल आप जो है दिन को न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रहेगी 50% और हवा की गति रहेगी आप जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो हिसाब से अपन देखो मौसम अगर अपने पतो है तो मौसम के हिसाब से अपन जो है खेती किसानी को काम पे करना चाहिए,
3: बिल्कुल सही कह रहे
0: हैं ना। आप जैसे पानी बरस रहा हो तो बोनी अपन बिल्कुल ना करें,
3: बिल्कुल
0: है ना। तो जो बात को ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। और बहन देखो अपनी हो जा रही है अब चलवे की बेरा, तो अपन किसान वाणी से तो किसान वाणी से लेता आ गया सो भाई मंगलू भैया और
3: जमुना बहन की
0: राम राम, जय जवान जय किसान।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
3: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा पर हैं। वो स्पेन के साथ साथ फिनलैंड और बेल्जियम की भी यात्रा करेंगे और भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और यूरोप के संबंधों में काफी बदलाव आया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, दोनों के बीच जो व्यापार है वो 80% से ज्यादा बढ़ा है। अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता पारंपरिक व्यापार से भी आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी साझेदार का रूप ले रहा है?
4: नमस्कार हर्ष, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और EU के बीच जो संबंध है उन्होंने एक नई शक्ल ली है, क्योंकि हम यूरोप को देखें तो 27 नेशंस को मिला के EU बनता है, और पिछले कुछ वर्षों में आप पन्ने पलट कर देखें तो उसमें EU की जो आर्थिक रफ्तार रही है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। वहां पर उनकी अपनी समस्याएं थी, आर्थिक उनका एजिंग पॉपुलेशन थी, लोग बुजुर्ग हो रहे थे, वर्कफोर्स की दिक्कत थी, मार्केट उतनी ग्रो नहीं कर रही थी। चाइना ने वहां पर अपना एक तरह से वर्चस्व जमाया हुआ था। चाइना से जो सामान आता है यूरोप में वो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आता है, इसलिए यूरोप में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग रही थी। यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा था कि भाई अब जब चाइना से सामान आ जाता है तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां भारतीय सामान, हालांकि भारत का काफी विस्तार हुआ है अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को देखें या भारत के सामान को वहां देखें, पर अभी वो जो कटिंग एज थी भारत के सामान पे वो आनी बाकी थी। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के डेलिब्रेशन चल रही है, TTC जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, इसको अब एक नया, और 27 जनवरी को ये हमारा साइन हुआ था जो यूरोप के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि 27 देश मिलके यूरोपियन यूनियन बनता है, हर एक की अपनी पार्लियामेंट है, हर एक का अपना एक प्रोसीजर है। 27 में से 20 तो यूरो मानते हैं करेंसी को, बाकी के जो 7 देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसीज रखी हुई हैं। ये भी स्वतंत्रता यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो हर एक देश की अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक या 2027 के शुरू तक ये सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे और इसकी पूरी पुख्ता शक्ल निकल के आएगी। और बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है हर्ष होने वाला, क्योंकि आप अगर आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 450 मिलियन की, 45 करोड़ के आसपास की यूरोप की आबादी है। अगर मैं GDP को देखता हूं, सारे देशों को जोड़ दूं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो लोग शायद जानते नहीं होंगे, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बाकी आप जर्मनी, फ्रांस वगैरह तो सब जानते हैं, इटली, इनको जानते हैं, पर उस 27 में बहुत सारे देश आ जाते हैं। $20 ट्रिलियन की हर्ष वहां पर टोटल GDP अगर हम ऐड करें तो बन जाती है। तो बहुत बड़ी मार्केट भारतीय सामान के लिए है। इधर यूरोप से जो भारत सामान आता है उसमें भी यूरोप भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है। आज भारत की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विश्व में इतनी बड़ी मार्केट एक ब्लॉक को मिलेगी एक साथ। तो दोनों देशों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों देश इसके पूरक एक तरह से देखे जाने चाहिए।
3: बिल्कुल, अगर हम कुछ डेटा की बात करें शरद जी, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो

0: व्यापार था 2025 में, पिछले साल वो तकरीबन 118.4 अरब यूरो का रहा था, और ईयू ने भारत से लगभग 69.5 अरब यूरो का पूरा आयात किया था, लेकिन भारत को लगभग 48.9 50 अरब यूरो कह सकते हैं कि भारत ने निर्यात किया था, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में था, हम इसे कह सकते हैं। और हमने अभी एक आंकड़े का और जिक्र किया था कि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच 80% से ज्यादा वस्तु व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में शरद अगर देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इनकी स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए भारत और यूरोप आर्थिक संबंधों के संदर्भ में?
1: बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये 27 देश हैं, हर देश का स्वचालित है, हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो, एक तो देखिए आप यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक बात करते हैं, पर हर देशों की अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो वो फिनलैंड जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तो वहां जो कंसर्न्स हैं उनको वो दूर कर रहे हैं, और हर देश से भी नेगोशिएशन बनती है और पूरे ब्लॉक के साथ भी नेगोशिएशन बनती है। तो ब्लॉक के साथ इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो चुकी है, वो फाइनल हो चुका है। अब जहां जहां थोड़े से, अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्विक्स, जहां जहां थोड़े थोड़ी लूज एंड्स है उसको बांधना है, कहीं उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए किसी विशेष वस्तु पर, अगर उनको उनको सफाई चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आप उसको भेजेंगे, किस रेट पे बनता है, क्या क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि अगर आप आइटम्स देखें, हर्ष आपने भी बात करी, और मैं आपको ये बता दूं जो आपने आंकड़े बताए कि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक भारत का इस समय सबसे बड़ा गुड्स के मामले में ट्रेड पार्टनर है, वरना हम चाइना अमेरिका से भी काफी व्यापार करते हैं, पर अगर गुड्स के मामले में आप देखें, खाली मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी से है, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी के पूरा कयास है, ये सारा एफर्ट हो रहा है। तो मैं आपको आइटम्स की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो जाता है जिक्र करना, क्योंकि हमारे जो श्रोता एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लाइन में है या जो एक्सपोर्ट की लाइन में आना चाहते हैं, ये जान के 93% बल्कि हमारा सामान वहां पर अब टैरिफ फ्री हो जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र के वो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं कुछ सेक्टर्स का नाम यहां पर लेना चाहूंगा हर्ष, उसमें टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरीन प्रोडक्ट जिसमें भारत की बहुत महारत हाथिर है, भारत का बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, लेदर गुड्स है, और इसमें एग्रीकल्चरल प्रोसेस गुड्स भी हैं जो कि सिलेक्टेड कैटेगरीज में वहां जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हमारा ये ट्रेड अग्रीमेंट होने जा रहा है तो क्या भारतीय किसानों को इसमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप तो कृषि के लिए भी, बहुत सारे यूरोप के ऐसे ऐसे हैं जहां कृषि में प्रोड्यूस होता है। इस एग्रीमेंट में भी पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे किसानों का हित कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यही जब एग्रीमेंट की फाइनल रूपरेखा निकल के आएगी, हालांकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर इंडिविजुअल देशों के साथ, जो देशों के साथ होगा, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी कृषि क्षेत्र को कोई आंच नहीं आने वाली है। हर्ष,
0: और यहां हम अपने श्रोताओं के लिए यह भी बता दें कि भारत वहां से क्या क्या आयात करता है यूरोप से। आपने बहुत सारी वो चीजें बताई जो कि भारत के निर्यातक वहां निर्यात कर सकते हैं, और भारत जो आयात करता है उसमें भी मशीनरी कुछ है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, मेडिकल, खासतौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ केमिकल्स वहां से आते हैं, हम आयात करते हैं। शरद, आपने अभी बात की FTAs की, FTA के बाद और आराम हो जाएगा हमारे निर्यातकों को, जो टैरिफ है एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं क्या, कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं क्या? थोड़ा विस्तार से इसको बताएं कि अगर कुछ बाधाएं हैं तो क्या है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
1: जी हाँ, देखिए जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और यही चैलेंजेस की वजह से आपको, जो हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं, उन चैलेंजेस को वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक उस पर समन्वय बन पाए उस पर बनाया जाए। और दो तीन चीजें मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए अभी तक चाइना का जो वर्चस्व था यूरोपियन यूनियन में, वो कीमत के मामले में हम उनको हर चीज में कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, ये हमें स्वीकार करना होगा। वहां से सामान सस्ता बन के आता था, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब होती थी, चाइना में हर तरीके का सामान बनता है। तो दो मानक पहले मैं लूंगा यहां पर, एक मैं लूंगा क्वालिटी का, दूसरा मैं लूंगा प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में, मुझे लग रहा है अब हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये दो चीजों पर ध्यान देना होगा, एक तो क्वालिटी, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, जैसा मैंने कहा हर देश में नियम अलग हैं, हर देश में जो पैमाने हैं सामान को एक्सेप्ट

0: करने के, इस्तेमाल करने के, वो अलग अलग हैं। तो एक्सपोर्टर जिस भी इन 27 नेशंस के ब्लॉक में भेजेंगे उनको उस देश के जो जो ये पैमाने हैं उनको दिमाग में रख के चलना होगा। और सबसे ज्यादा ध्यान, जो मैंने शुरू में दो बात कही, कि क्वालिटी और प्राइस पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे होंगे। अब इस टैरिफ के हटने के बाद, 93% सामान पे टैरिफ हटने के बाद, हमारा जो सामान है वहां प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कीमतों के मामले में हम चाइना से कुछ कुछ आइटम तो ऐसे होंगे हम बेहतर हो जाएंगे। तो अगर यहां पर अगर हम क्वालिटी को भी हम अप टू द मार्क रखते हैं, क्वालिटी को हम बिल्कुल उच्चतम रखते हैं, और दूसरी तरफ हम कीमत कम रखते हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है, मुझे लगता है वो जगह हम धीरे धीरे ले पाएंगे। आज हम कुल अगर निर्यात देखें अपने देश का, हर्ष, तो $850 बिलियन से ऊपर हम पहुंच चुके हैं। इसको इस साल तक 2027 तक $1 ट्रिलियन ले जाने का हमारे माननीय जो मंत्री है उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लग रहा है ये जो FTA है ये उस ओर कदम हमारे ले जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका निर्यात बढ़ेगा और यहां से जो टैरिफ लगने की वजह से जो सामान महंगा हो जाता था वो अब वो महंगाई उस सामान में से हट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट जाएगा और हमें जो एक्सपोर्टर सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को, वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उस देश की क्वालिटी के हिसाब से वो सामान को बनाएंगे। बाकी जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं वो तो ध्यान में रखना ही होगा, उसके बिना तो वो सामान को वहां आने ही नहीं देंगे। तो देखिए, सरकार का काम होता है, हर्ष, एनेबलर का, यानी कि सरकार आपको एक माहौल बना के दे दीजिए। अब इसका जो लाभ उठाना है, वो लाभ उठाना तो लोगों के हाथ में, लाभ उठाना तो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में, लाभ उठाना एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के हाथ में। दूसरी एक जरूरी बात मैं, हर्ष, इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि हम इसको कोऑपरेशन को खाली हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश आएगा वो भी इस FTA के बाद आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेशनल सर्विसेज जो देनी होती है, भारत तो सर्विसेज के लिए जाना जाता है, आपको पता है भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा GDP का सर्विसेज से बनता है और हमारा लोहा दुनिया मानती है, खासकर IT सर्विसेज में, वहां पर भी उसका भी इसमें जिक्र होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत सारी होती है दोनों देशों से, वो भी इस FTA में शामिल की जाएगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, उसका भी जिक्र आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जब महारत हासिल करी है वो डिजिटलाइजेशन में हासिल करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रूपरेखा इसकी निकल के आएगी, जब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें भारत के जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उसका जरूर जिक्र आएगा। और पीपल टू पीपल रिलेशंस हो गए, भारत के जो प्रोफेशनल्स है वहां जाके काम करते हैं, उनके वीजा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, यूरोप से लोग यहाँ आके जब जरूरी होगा काम कर पाएंगे, भारत के लोग वहां जाके काम कर पाएंगे। FTA का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, हर्ष, बहुत बड़ा होता है, इसका जो पूरा घेराव होता है बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जी
1: बिल्कुल, शरद, आपने चीन की बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। यूरोप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं जिसकी आपने बात की, इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए। यानी कि अब यूरोप की जो कोशिशें थी इसमें भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।
0: बिल्कुल, भारत की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी और यूरोप का भारत के साथ इस प्रकार आके पूरे के पूरे ब्लॉक का, मुझे लगता है इतने सारे देश एक साथ आके भारत के साथ, इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो, अब यूरोपियन यूनियन अगर मैं इसको ना बोलूं तो 27 देश एक साथ आके भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उनको भारत की मार्केट दिख रही है और वो चाइना के अलावा एक और चेन खड़ी करना चाहते हैं। हमारे साथ और देश हैं, इसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबलाइजेशन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करी है। भारत की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल देश भी भारत है, यानी कि जहां यूथ जो है बड़ा कुछ करके दिखाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है, एक एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से भारत के एक्सपोर्टर्स अब विश्व की तरफ देखने लगेंगे। जो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा, हर्ष, आज इस शो के माध्यम से
1: जी,
0: उन बिजनेसमैन का जिन्होंने आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, मैं समझता हूं ये FTA को और आज आपकी हमारी इस बातचीत के जरिए उनको ये समझ में आएगा कि ये FTA मात्र एक डिस्कशन की चीज नहीं है, एक श्रोताओं को बताने की चीज नहीं है, एक समझने की चीज है कि आप किस प्रकार उस मार्केट की ओर देख सकते हैं, अपने सामान को वहां ले जा सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। आज आप यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां, देखिए दोनों तरफ ही इसके होने के बाद दोनों तरफ नौकरियों में इजाफा दिखाई देगा, क्योंकि जो नए यूनिट्स लगेंगे जिस सामान की यूरोप को जरूरत है उसकी यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी,

0: उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कुल मिला के जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ा ये इंजन का काम करेगा।
1: कुल मिलाकर एक बहुत बड़े इंजन का काम करेगा आर्थिक विकास की दिशा में। शरद कोहली जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया है गीत फिल्म ब्रह्मचारी से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना और संगीत है एस डी बर्मन का।

0: हाँ, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या।

सपन चक्रवर्ती और आरडी बर्मन की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गोलमाल से। गुलजार का लिखा यह गीत, संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह ने। आनंद बख्शी का रचा हुआ यह गीत है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। मजरू का लिखा गीत, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत

0: भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
4: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
5: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
8: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
7: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
8: We had issued a statement post-summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
7: Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation.
8: Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, blocking essential supplies, enforcing internet blackouts and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan fully accountable to these egregious abuses and mistreats.
7: The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey.
9: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
7: More from our correspondent.
1: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. India's largest global textile event, Bharat Text 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, Bharat Tex is the vision of the Prime Minister. He said, it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said, MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said, free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. The government today released the country's first trial index of services production, or ISP, for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. The inaugural index, with 2024-25 as the base year, covers April 2026 and accounts for nearly 60% of India's services sector. ISP will be released on the 29th of every month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers will now visit house-to-house in both the states till 24th of this month, which was earlier scheduled till 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on 31st of this month. Railways Minister Ashwini Vaishnav has announced a major policy reform that allows fertilizers to be transported in specially designed containers instead of traditional covered box wagons. Briefing media in New Delhi today on the reforms aimed at modernizing Indian railways, Mr. Vaishnav also announced a major reform in fly ash transportation, shifting movement from open railway wagons to specially designed containers. The minister said the new container-based system will reduce dust pollution during loading, transport and storage.
10: If we can establish an efficient transportation mechanism, we can utilize fly ash in an economically viable way, either in cement production, road construction or other building projects. During rail transportation, loading fly ash into standard wagons causes severe pollution because fly ash is extremely refined and powdery. When the train travels at a speed of up to 100 km per hour, a large amount of fly ash blows out of wagons, causing environmental issues all along the transit route. This is why we have introduced this reform. We have designed special containers specially for fly ash, which feature top loading capabilities.
11: Loading hogi top se.
7: Mr. Vaishnav also announced a unified license system under container policy. Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Pralhad Joshi today chaired a review meeting to strengthen the country's food grain storage ecosystem in New Delhi. In a social media post, Mr. Joshi said the meeting reviewed the proposed storage policy and the private entrepreneurs guarantee scheme. He said the discussions focused on addressing emerging challenges in food grain management, including regional storage imbalances, surplus stock management, optimization of storage capacity, and the need to revise storage norms

0: in line with current procurement trends. Vice President C.P. Radhakrishnan today emphasized that the Constitution remains the foundation of democratic stability and national unity, while Parliament's power to amend it enables the nation to meet the needs of changing times. The Vice President said this while releasing the book titled The Voice of Justice, Justice Gawai Speaks, in New Delhi.
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional trust.
0: The book offers a collection of speeches, lectures, and reflections of former Chief Justice of India, Justice Bhushan Ramkrishna Gawai. The Supreme Court today agreed to hear the Bhojshala dispute in Dhar district of Madhya Pradesh on a day-to-day basis to resolve the issue. However, the bench comprising Chief Justice of India, Suryakant, Justice Joymalya Bakshi and Justice V. Mohana declined that the petitioner's request for an interim order restoring the status quo ante under which Muslims were permitted to offer namaz on Fridays alongside Hindu worship on designated days. The bench directed the state to make available a separate open space adjacent to the subject site to the Muslim site for offering namaz on Fridays between 1 p.m. and 3 p.m. The bench clarified that this arrangement is ad hoc in nature, subject to the final outcome of the matter. The bench urged both sides to exercise patience, describing the matter as highly sensitive. The top court was hearing a batch of appeals challenging a Madhya Pradesh High Court order, which said the disputed Bhojshala complex was a temple dedicated to Goddess Saraswati and prohibited the offering of namaz there. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the passing of senior BJP leader Ramchandra Gowda. In a social media post, Mr. Modi described Mr. Gowda as a strong pillar of the BJP in Karnataka who devoted decades of his life to strengthening the party at the grassroots and mentoring generations of party workers. The Prime Minister said Mr. Gowda's public life as a corporator, member of the Legislative Council and minister was marked by unwavering commitment and dedicated service. Mr. Modi also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved family, supporters and his admirers. Union Minister of Civil Aviation Kinjarappu Ram Mohan Naidu announced that Dholera International Airport will be operational within 3 months. Talking to media after reviewing the progress of the project, the minister said 80% project work completed and the government aims to complete the remaining terminal construction and secure the necessary licensing within the next 3 months to commence flight operations. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. We have a report.
2: Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined by 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 Index fell nearly 1%. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 58 paise to close at 96 rupees and 20 paise against the US dollar. With Abhishek report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: On to sports. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In cricket, England have set a target of 259 runs for India in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham. In reply, India were 97 for 2 in 19 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterated its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. And in men's cricket, India chased target of 259 runs set by host England in first ODI at Birmingham. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने अबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरीना हल की खातिर ईरान और अमेरिका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहिदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सस में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले एक रोजा बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नजर वो मगरबी एशिया के वाकयात पर करीबी नजर रख रही है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
4: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
3: भारत ने आज अबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे जिनमें 30 भारतीय मल्ला भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था।
4: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है आज सवेरे हमला हुआ तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
3: पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे सिलसिलेवार इस्तेसाल बुनियादी हकूक फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म और जबर का बराह रास्त नतीजा है।
4: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
3: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहिदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी तजारती मुआहिदे को ये कहते हुए भारत के तजारती सफर में एक फैसला कुन संगे मील करार दिया कि ये दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इकतसादी शराकत दारी कायम करेगा। ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کا نفاذ بھارت کے عالمی سطح پر مربوط، لچکدار اور مسابقتی معیشت بننے کے سفر میں ایک اہم قدم

दोस्तों अभी आप रेखा विशाल भारद्वाज की आवाज में गजल समाप्त फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र उर्दू अदब के वो मुनफरिद मुअम्मार हैं जिन्होंने गजल को रिवायती गुल बुलबुल और जुल्फ और रुखसार के हिसार से निकाल कर एक नई जिंदगी बख्शी।

गजल में ऐसे लफ्जों को दाखिल किया जिन्हें पहले गैर शायराना समझा जाता था, जैसे पुलोवर, रिबन, रेल और ग्लास। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने उनके फन को सराहते हुए ठीक ही कहा था। बशीर बद्र ने पोएट्री में नई बस्तियां आबाद की हैं। उनकी तख्लीकात जैसे इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान, आहट, गजल के जदीद सफर के वो संगे मील हैं जिन्होंने उर्दू गजल और उर्दू दा तबके को भी अपना गुरवेदा बना लिया। उनकी इसी अदबी खदमात के एतराफ में अदबी और सकाफती इदारों ने उन्हें मुतादित एजाजात और अवार्ड से नवाजा। उनमें से उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और बिहार उर्दू एकेडमी के एजाजात के अलावा हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री जैसे आला अवार्ड से नवाजा और 1999 में उनके शेरी मजमुए आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उनका विजन इतना दूरस्थ था कि उन्होंने 1984 में ही अपनी किताब आमद में 2035 के कारीन के नाम एक खत लिखा, जिसमें ये दावा किया कि उनका उसलूब आने वाले अहद की गजल की बुनियाद बनेगा। उनके बदले हुए लहजे की एक झलक उनके अशार में मुलाहिजा कीजिए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। बशीर बद्र ने इंसानी रिश्तों की नफसियात को जिस तरह समझा वो उनके अशार से जाहिर है जो आज ज़बाने ज़ादे आम है, जैसे कि ये शेर। ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे, और जिंदगी की जद्दोजहद को इस तरह बयान करते हैं इस शेर में। देखिए, रेल की पटरी पर मेरी शोहरत रख दी, बस के पहियों से रोजी रोटी बांधी। दोस्तों, हम बशीर बद्र के बारे में और मजीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है ये गजल मुश्ताक हुसैन की आवाज में, और कलाम है बशीर बद्र साहब का।

दोस्तों, अभी आप मुश्ताक हुसैन की आवाज़ में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र साहब की जिंदगी सिर्फ मुशायरों की तालियों और वाह वाह तक महदूद नहीं थी। उन्होंने हिजरत, फसादात और अपनों के बिछड़ने के गहरे जख्म भी सहे। मई 1984 में जब वो कराची में एक मुशायरे की कामयाबी समेट रहे थे, उसी वक्त मेरठ में उनकी पहली शरीक हयात कमर जहाँ का इंतकाल हो गया। सदमात का ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1987 के मेरठ फसादात में उनका घर, उनकी तमाम यादें और नायाब कुतुब का इल्मी सरमाया नजरे आतिश कर दिया गया। उस वक्त एक इंसान के टूटने का मंजर और उसकी सदा उनके इस शेर में सुनाई देती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन बशीर बद्र का फन सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इंसानियत को मोहब्बत और सुलह का रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखाया कि नफरत की आग में भी दोस्ती की गुंजाइश बाकी रहना चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान का सहारा है। जैसा कि उनका ये शेर, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वो तनकीद और मुखालिफत से घबराने वाले शायर नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि मुखालिफत इंसान के किरदार को जिला बख्शती है। उन्होंने अपनी शख्सियत को तजादात के बीच इस तरह संवारा कि उनका दुश्मन भी उनके वक़ार का कायल हो गया। जैसे कि इस शेर में ये बात जाहिर होती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मशहूर फिल्मसाज विशाल भारद्वाज बशीर बद्र के बहुत बड़े रहे हैं। विशाल उन्हें अपने रूहानी उस्ताद मानते हैं और अक्सर उनके अशार से अपनी फिल्मों में तहरीक हासिल करते रहे। बशीर बद्र को उन्होंने वो इज्जत दी जो एक सच्चे फनकार का हक होती है। वो अक्सर कहते थे कि बशीर बद्र का कलाम सिर्फ शायरी नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का फन है। सामईन, इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बिहारी लाल राव की आवाज में और कलाम है बशीर बद्र साहब का, समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप बिहारी लाल राव की आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। दोस्तों, सफर जिंदगी के

आखिरी तवील अयाम डॉक्टर बशीर बद्र ने झीलों के शहर भोपाल में अपनी दूसरी शरीक हयात डॉक्टर राहत सुल्तान के साथ गुजारे। वक्त का सितम देखें कि वो शायर जिसने करोड़ों दिलों को लफ्जों की रोशनी दी, आखिरी बरसों में अल्जाइमर जैसे मर्ज का शिकार होकर अपनी ही याददाश्त खो बैठा। उन्हें ये तक याद ना रहा कि कभी उनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। बिलाखिर 28 मई 2026 को उर्दू गजल का ये एहतसास शायर हमेशा के लिए खामोश हो गया। बशीर बद्र जिस्मानी तौर पर हम में नहीं है, लेकिन उनका ये फलसफा कि मोहब्बत में एहतियात जरूरी है, हमें हमेशा याद रहेगा। जैसा कि उनका ये शेर, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। उनकी शायरी इंसानी रिश्तों की नज़ाकत को कुछ इस तरह इस शेर में बयान करते हुए दिखाई देती है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वो अपनी यादें हमारे पास छोड़ गए हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज बशीर बद्र की याद में ये प्रोग्राम उनके इस शेर पर खत्म करते हैं जो उनकी जिंदगी और फन का निचोड़ है। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। बशीर बद्र की जिंदगी और फन पर मबनी ये खसूसी पेशकश यहाँ इख्तिताम पजीर होती है। उनके लफ्ज हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि सच्ची शायरी कभी नहीं मरती। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर रसाल करें क्योंकि आपकी आवाज़ कहकशा की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरिन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म हाथ की सफाई से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए फिल्म इश्क इश्क इश्क से। इस गीत को आवाजें दी हैं किशोर कुमार और आशा भोसले ने, संगीत संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म खेल खेल में से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, गुलशन बावरा का लिखा गीत और आर डी बर्मन का संगीत।

0: हाँ
1: क्या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है
1: कह

फिल्म दीवार का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, साहिर के लिखे बोल और आर डी बर्मन का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें हैं। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, फिल्म दोस्त के सी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए राग मालकौंस पर श्रुति अधिकारी का संतूर वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे श्रुति अधिकारी का संतूर वादन, राग था मलकौंस।
1: नसंसनी नसंसनी नसंसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर दिन रात न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए।

0: साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the Ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।